0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटती। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
0: Big 106.2 The Beat of Bollywood.

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती, किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं, कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पड़ते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2, the beat of Bollywood.
1: Golden dreams begin with big ticket.
2: A guaranteed 25 million dirham grand prize.
1: 5 consolation prizes, 200 grams of 24 karat gold each.
2: And more gold to win in weekly intros.
1: 3 chances to spin for up to 1 million dirhams with Big Spin.
2: Buy your ticket now at bigticket.ie.
3: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
4: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
0: बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 7:05।
1: Bollywood.

0: Daniel, brought to you by Zulekha Hospital. Your health matters.
1: सुबह उठते ही अपने आलिशान घर से सी फेसिंग भी, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंट्स के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है। शाहरुख बाय डैनियल, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स। लिव लाइफ किंग स्टाइल।
2: हैव यू गॉट व्हाट इट टेक्स टू से स्टॉप?
3: Are you kidding?
0: The Big Cash Call. Presenting sponsor Skechers. Title sponsor Papa John's. Powered by Big Ticket. Coming soon on Big 106.2.

0: बजे सिर्फ बिग 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: मॉर्निंग साबित कर रहा 25 मिनट ऑन दिस मंडे की सुबह। 29 डिग्री सेल्सियस से आज दिन की शुरुआत। द ह्यूमिडिटी एट 71%। इट्स बैक टू बीइंग हॉट एंड ह्यूमिड। विंड्स ब्लोइंग एट 8 किलोमीटर पर आवर। हाइज ऑफ 34, लोज ऑफ 29 डिग्रीज।
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: जब से झंकार से है दिल के तार में तब से
1: The Big Breakfast with Zid now is Shahrukh's Residences by Danyub only on Big 106.2 The Beat of Bollywood.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 8:09।
1: बॉलीवुड।

0: यार हमारी फिल्मों की कहानियां लुक एंड फील वगैरह तो काफी साउथ इंडियन फिल्म से इंस्पायर होने लगा है. नाउ द म्यूजिक हैज आल्सो स्टार्टेड साउंडिंग सिमिलर.
1: डोंट चेस बैंक्स, कम टू मी. Credit cards, loans and mortgages at creditmarket.ae. Call 800 Alfred. Alfred simplifies money.
2: The Big Breakfast with Sid. Now is Shahrukh's Residences by Danube on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: Yes, good morning. This is Shahrukh's Residences by Danube. How does that sound? Yeah, it's quite amazing, right? My name is Sid, and yes, the reason why that song was sounding so much like... इट्स अ हिंदी सॉन्ग होनी, ऐसा लग रहा था ना कि कोई साउथ इंडियन गाने को लिया है और उसकी हिंदी में डबिंग कर दी गई है, वो जबरदस्ती के लिरिक्स डाल दिए गए. नहीं, बिकॉज इट इज एक्चुअली अ हिंदी सॉन्ग कंपोज्ड बाय जीवी प्रकाश कुमार, हु वर्क्स प्रेडोमिनेंटली इन द तमिल फिल्म इंडस्ट्री. तो या अपकमिंग हिंदी लैंग्वेज बींग द की वर्ड विच काइंड ऑफ हैज दिस वेरी साउथ इंडियन फील. सुपर नेचुरल कॉमेडी ड्रामा फिल्म का ये जो गाना था, सॉन्ग ऑफ द आवर, ब्रॉट यू बाय इंश्योरेंस मार्केट, एंड नई नवेली इस फिल्म का नाम है. 16th of October, यानी कि चार दिन बाद ही रिलीज होने वाली है. आई वॉज जस्ट हैविंग दिस यू नो डिबेट विद अ फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइंड, इज देयर विच इज द न्यू एज हिंदी एक्ट्रेस जिनके नाम पे पूरी पूरी फिल्म चल सकती है. एंड द टॉप नेम दैट केम अप वॉज यामी गौतम धर. या यामी गौतम इज प्लेइंग मोहिनी इन दिस फिल्म, साथ में आदिनाथ कोठारे, मीता वशिष्ठ, सोनल झा, सुनीता राजवर, राजेश दुबे, विच मीन्स दैट येस, दिस इज अ फिल्म दैट इज गोइंग टू रन और नॉट बेस्ड ऑन यामी गौतम्स नेम. यार आई मीन 5 years ago इफ somebody told you that, you would not have believed. या सेटिंग क्या है, chaotic joint family जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश से है. आई ऑलरेडी लव इट. एंड द ट्विस्ट इज के मोहिनी यानी कि यामी गौतम जब एक घर में आती हैं शादी करके, मिराकुलसली शी ट्रांसफॉर्म्स दैट कियोटिक होम इनटू अ पीसफुल ऑर्डरली पैराडाइज. ऐसा कैसे हो सकता है कि बहू के आने से सारे कलेश खत्म हो जाते हैं? बहू के आने से तो नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट. कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि सारी ऑल द एंटायर फैमिली कैनॉट हेल्प

पैराडाइज, ऐसा कैसे हो सकता है कि बहू के आने से सारे कलेश खत्म हो जाते हैं? बहू के आने से तो नहीं, दैट आई एम नॉट सेइंग दैट. कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि सारी ऑल द एंटायर फैमिली कैन नॉट हेल्प बट अडोर यामी गौतम उर्फ मोहिनी, लेकिन उनका जो ब्रदर इन लॉ है ना, ही ग्रोज सस्पिशियस ऑफ हर कि यार ये क्या बात है, इतना परफेक्ट बिहेवियर कैसे हो सकता है? इतना परफेक्ट बिहेवियर तो यार सिर्फ डायनो का होता है. तो क्या मोहिनी एक डायन है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आपको देखनी पड़ेगी नई नवेली कमिंग आउट ऑन द 12th of October. नहीं, 12th तो आज है भाई, 16th October. Here's Hansraj Hans with Dil Chori. This is Shahrukh's Residences by Danube.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 9:09।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. Get ready to celebrate Diwali like never before. The Big Diwali Mela is back. On Saturday, 31st October, join Team Big at Oasis Center Dubai for a spectacular evening filled with fun, games, a fabulous fashion show, spin the wheel and loads of festive entertainment. Bring your family, bring your friends and come make unforgettable Diwali memories with Big 106.2. The Big Diwali Mela, where the celebrations are always big. Presenting sponsor, Papa John's. Powered by Solite Batteries. Venue partner, Oasis Center Dubai. Only on Big 106.2. A part of Fun Asia's global media network.
1: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetto T2, T1 and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq. Four exciting SUVs. With prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
2: अपने बिजनेस ड्रीम को दीजिए एक नई शुरुआत अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन के साथ अब सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस 48 आवर्स में एक वीजा पाइए पैकेजेस सिर्फ 4,888 दिरहम से शुरू 100% डिजिटल प्रोसेस मतलब ऑफिस विजिट की जरूरत नहीं एक ही लाइसेंस में 10 बिजनेस एक्टिविटीज साथ ही फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट प्लान्स आज ही 0680888888 पर कॉल कीजिए या विजिट ancfz.ae
0: The Big Breakfast now is Shahrukh's Residences by Daniel. Brought to you by Zuleika Hospital. Your health matters.
3: सुबह उठते ही अपने आलीशान घर से सी फेसिंग भी, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी एक गेम पैडल या टेनिस शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ और रेजिडेंस के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है Shahrukh's by Daniel. Fully furnished residences starting at 1.65 million dirhams. Live life, king style.
4: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
5: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: Big weather update brought to you by Al Ras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
6: 9:18 on this Monday ki subah 33 degrees Celsius right now. Humidity phir se high ho gayi 60% humidity at 7:09. Winds blowing at 6 kilometers per hour. Highs of 34, lows of 30 degrees Celsius.
0: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.ae.

0: The Big Breakfast with Sid. Now is Shahrukh's Residences by Danube on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Yes, there's a completely new name of the show. It is not The Big Breakfast from this morning. It is Shahrukh's Residences by Danube. With me is Sid. Haan, mera naam is exactly the same. It's 9:26 on the clock. And right now, it is a chance for you to win two open movie tickets in The Big Bollywood Quiz. Main aaj aapko ek dialogue sunane wala hoon. And is dialogue ko sunkar aapko mujhe batana hai ki film ka naam kyun hai. Why this particular film? Because is film ka aaj very simply birthday hai. There is a film that actually, in my opinion, defined an entire genre in Bollywood. And this film turns 19 years old today, the 12th of October 2026. Aaj iska 19wa janamdin hai. Batao kaun si film mein Akshay Kumar was at his complete best.
2: मैं बस हिसाब कर रहा था कि जब मैंने जोड़ा घटाया गुनाकार किया और उसके बाद जब भागाकार किया तब एक ही जवाब मिला और अब शायद वो सही भी है, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि वो फिर एक बार जोड़ने घटाने गुनाकार करने और भागाकार करने में गलत क्या है।
1: कॉमिक टाइमिंग प्रो मैक्स अक्षय कुमार की है, ये साबित हो गया 19 साल पहले विद दिस फिल्म। क्लू फॉर यू ऑफ कोर्स इज द फैक्ट दैट इट डिफाइंड एन एंटायर जॉनर। आजकल दिस इज वेरी वेरी पॉपुलर जॉनर। इसका एक एग्जाम्पल आने वाला है ना यामी गौतम फिल्म ऑल्सो वेरी सून। एंड इस जॉनर की दो फिल्में ऑलरेडी इस साल रिलीज हो चुकी हैं। सो व्हाट फिल्म एम आई टॉकिंग अबाउट, कौन सी फिल्म है अक्षय कुमार ने जोड़ा तोड़ा मरोड़ा, बताओ। कॉल करो 800-1062, फिल्म का नाम सही हुआ तो आप जीत सकते हैं दो ओपन मूवी टिकट्स। द नंबर इज 800-1062।
3: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
0: The Big Breakfast now is Shahrukh's Residences by Danube. Fully furnished residences starting from 1.65 million dirhams. Live life, king style.
4: Now lease a brand new SUV from Jetour and Skoda with prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. T&C apply.
5: Let me tell you something about business. You never really know how far it can take you. Today it might be a license, tomorrow an office, then suddenly you need more visas, a warehouse, maybe even industrial land. So start somewhere that can grow with you. At Umalkwain Free Trade Zone, you get more than a business license. You get one complete ecosystem to start, operate and scale your business with visa and bank account assistance too. Visit uaqftz.com.
6: शादी हो या कोई भी त्योहार, बावरी और कोरा से दिखो शानदार हर बार। From graceful kurtas and majestic sherwanis to intricately crafted saris, lehengas and salwar suits, redefine ethnic style whether it's for him or her. Get festive, get fabulous at Bavri and Kora at Meena Bazaar, your favorite wedding shopping destination.
0: The Big Mix, miss kiya.

0: 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.
1: पूरे देश को पगला दूंगा, अभी तो कुछ पेश किया है, सुनो। नाम या दाम? नाम
2: मनी फॉलोज माय ब्रदर।

0: The Big Breakfast with Sid. Now is Shahrukh's Residences by Danube on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: We've got Rajesh with me on the phone line. Rajesh bhai, kya haal chaal hai?
2: Sid bhai, good morning. एकदम मस्त है। आप कैसे हैं?
1: तबीयत आवाज से तो आप बिल्कुल ही सही लग रहे हो, लेकिन जवाब जो आपने मुझे पहले दिया था उससे कुछ क्रॉस कनेक्शन हो गया। एंड भाभी जी को आपको करेक्ट करना पड़ा, ये अक्सर होता है। कितनी बार भाभी जी आपको करेक्ट करती हैं लाइफ के अंदर?
2: अभी तो बेटर हाफ है मेरी, वो मुझसे बेटर है।
1: कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंसी हो रही है भाई, बता रहा हूँ मैं, थोड़ा बच के।
2: हाँ बिल्कुल, आज से थोड़ा सा मैं भी अपनी सेल्फ ट्रेनिंग पे ध्यान रखूं।
1: थोड़ा ध्यान रखो भाई, थोड़ा ध्यान रखो नजरें। हाँ, बट यू शुड नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड व्हाइल ड्राइविंग। लेकिन चक्कर ये कि मैंने
2: हाँ मतलब तो उन्हीं का होता है, पिक्चर तो उन्हीं को देखनी होती है।
1: मतलब आप कहना चाह रहे हो कि आप आंखें बंद करके पिक्चर हॉल में बैठने वाले हो?
2: हमें तो बस उन्हें जाकर के कहते ना, वो एक स्नैक्स का अरेंजमेंट करना है, गाड़ी में बैठा के इनको लेके जाना है, देखो वापस लेके आना है।
1: देखो ये हाय बेचारा का जो नाटक है ना, ये मैं कई सालों से करते आ रहा हूँ इस दुनिया का। मतलब आई बिन देयर डन दैट ब्रो, तो मेरे को पट्टी मत पहनाओ, ठीक है ना। मजा तो राजेश भाई को ही आने वाला है सिनेमा हॉल के अंदर, लेकिन हाय बेचारा, ओ माय गॉड, हमारा तो काम धर्म पत्नी को मिसेज को खुश करना है भाई। हमारा काम सिर्फ आपको ले जाना पहुंचाना है और घर वापस लेके आना है सही सलामत है, फिर पॉपकॉर्न समोसा ये सब आपकी खिदमत में हाजिर है हम लोग हैं।
2: अभी सुन नहीं रही है तो अपने बयान निकाल रहा हूँ।
1: नहीं वो पता नहीं है, पता नहीं चलेगा, वो सुन रही है, वो सुन रही है, आवाज उन तक पहुंच रही है। आप टेंशन मत लो, आज का जवाब आपको मिलेगा, मिलेगा। शाम को बताना मुझे कल सुबह कि आज शाम आपकी कैसी गुजरी है ना। लेकिन राजेश भाई, लास्ट टाइम मैंने एक सवाल पूछा था, या चक्कर पीपल हुआ लाइक अपना सर गुजारेंगे, क्या बात चल रही है। लास्ट टाइम आई आस्क यू अ क्वेश्चन, एक अक्षय कुमार का डायलॉग मैंने सुनाया था, फिल्म जो कि एक जॉनर जिसने डिफाइन किया था, 19th आज बर्थडे है इस फिल्म का। एंड डायलॉग कौन सी फिल्म का था जो राजेश ने नहीं बताया? उनकी पहले तो उन्होंने कह दिया नमस्ते लंदन, दैट वाज द रॉन्ग आंसर। वी हंग अप, देन ही कॉल्ड बैक अगेन सेइंग कि मेरी मिसेस ने कहा ये वाला आंसर है, और जवाब क्या है?
2: भूल भुलैया,
1: एब्सोल्युटली करेक्ट। कांग्रेचुलेशंस, दो ओपन मूवी टिकट्स आपके हो गए।
2: Thank you.
1: Enjoy yourself at the movies. If your wife allows you to come to the cinema hall after what we've spoken about in the past 5 minutes. But chalo, congratulations. Have a wonderful, wonderful week ahead. Maza aagaya aapse baat karke. Take care.
2: Thank you. Bye. Thank you. Pleasure, sir. Thank you.
1: That is Rajesh, हमारे आज के विनर हैं। Don't forget, रोज सुबह हम आपकी टेस्ट करते हैं बॉलीवुड नॉलेज, फिर आप जवाब दीजिए, आपकी वाइफ से पूछ के जवाब दीजिए, जैसे भी, आई डोंट केयर, बट द नंबर इज 800-1062. Yes, भूल भुलैया इज द फिल्म दैट सेलिब्रेट्स इट्स 19th बर्थडे टुडे. भूल भुलैया टर्न्स 19 एंड लाइक आई टोल्ड यू, इट इज दैट जॉनर डिफाइनिंग फिल्म। ये जो हॉरर कॉम वाला एक पूरा दौर चल रहा है दैट वी आर लिविंग इन, मतलब इतनी सारी फिल्में आई, स्त्री एंड सो मेनी, भेड़िया वगैरह, वो सारी की सारी काइंड ऑफ फॉलोड भूल भुलैया का एग्जाम्पल एज वेल, यू नो, राइट? आई मीन प्रियदर्शन की ये फिल्म थी, एंड देन दिस वॉज एक्चुअली एन अब्सर्डली बिजी बॉलीवुड फ्राइडे, राइट? अक्टूबर 12th को बहुत सारी फिल्में आर सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडे। लागा चुनरी में दाग इज अ फिल्म दैट रिलीज, ऑल्सो तुम्बाड़, टॉकिंग अबाउट हॉरर फिल्म्स, तुम्बाड़ टर्न्स 8 years, एंड अय्या, मक्खी, चिटागोंग, भूत रिटर्न्स, लॉग इन, प्रेम मई, ऑल ऑफ दीज फिल्म सेलिब्रेट देयर बर्थडे टुडे द 12th ऑफ अक्टूबर।
3: शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूं, बहुत गहरा जाना चाहता हूं, देख मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूं, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है, फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे।
0: Big 106.2, The Beat of Bollywood.
4: I can't wait.
5: Okay. 3, 2, 1.
4: Yes!
6: Here you go, sir. Enjoy your Papa John's new pan pizza.
4: Whoa, cheese all around.
5: And edge-to-edge toppings.
4: And crispy garlic parmesan crust, too.
5: Let me try.
4: Order your own.
6: Papa John's. Better ingredients, better pizza.
7: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetto T2, T1, and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq, 4 exciting SUVs. With prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan, visit selfdrive.ae. TNC apply.
8: मेरठ की एक पिक्चर परफेक्ट फैमिली, एक परफेक्ट बहू, और एक ऐसा राज जो सब कुछ बदल दे।
9: तुम्हें डायन ही चाहिए थी ना, लो आ गई।
8: Amazon MGM Studios एंड Color Yellow Production present नई नवेली स्टारिंग यामी गौतम, आदिनाथ कोठारे, सुनीता राजवर एंड अदर्स। रिलीजिंग 16th October इन सिनेमास। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अल निसर सिनेमा फिल्म। टू विन इनवाइट्स कीप लिसनिंग टू बिग 106.2।
10: सुबह उठते ही अपने आलिशान घर से सी फेसिंग भी, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी। एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंट्स के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है। शाहरुख्स बाय डैनियल, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 million dirhams। लिव लाइफ किंग स्टाइल।
0: हैव यू गॉट व्हाट इट टेक्स टू से स्टॉप? The Big Cash Call. Presenting sponsor Skechers. Title sponsor Papa John's. Powered by Big Ticket. Coming soon on Big 106.2.

0: करते हैं हम लोग E88 की एंड सेफ जोन की तरफ ज्यादा वो ट्रैफिक आपको ईस्ट बाउंड मिलेगा 3 से 4 मिनट का. ऑल्सो बिट ऑफ ट्रैफिक गोइंग टुवर्ड्स ओएसएस मॉल इन शारजा एंड दिस इज अगेन E88 देन E11 पर एज यू हेड साउथ फ्रॉम अजमान इंडस्ट्रियल 2 बिट ऑफ कंजेशन गोइंग टुवर्ड्स E88 देन E11 311 पर साउथ बाउंड ट्रैफिक गोइंग टुवर्ड्स दुबई फ्रॉम शारजा. द यूजुअल बेरूत स्ट्रीट का भी साउथ बाउंड ट्रैफिक राइट आफ्टर मदीना मॉल. यू फाइंड अ बिट ऑफ कंजेशन एट द इंटरनल रोड्स DIFC पे. यू नो दोज सीरीज ऑफ ट्रैफिक लाइट्स जो आती है वहाँ पर काफ़ी आपको कंजेशन मिलने वाला है. D75 शेख राशिद स्ट्रीट गोइंग टुवर्ड्स दुबई फ्रेम हेडिंग ईस्ट यू फाइंड बिट ऑफ कंजेशन एट मैदान स्ट्रीट एंड D71 ऑल्सो फाइनेंशियल सेंटर स्ट्रीट गोइंग टुवर्ड्स दुबई मॉल एंड देन देयर इज 44 अलखेल रोड पर ट्रैफिक इन टू पॉकेट्स बिजनेस बे की तरफ जाता हुआ फ्रॉम D3 एंड देन हेडिंग साउथ आफ्टर अलकूज 4th.
1: Now lease a brand new SUV from Jetwort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
2: Big 106.2.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: गुड मॉर्निंग 10:08।
1: Bollywood.

0: Breakfast with Sid. Now is Shahrukh's Residences by Danube on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: 10:12 on this 12th of October, Monday ki subah. Often online ki duniya mein ye hota hai that you think that you're going to get paid, लेकिन उसमें एक L आ जाता है एंड देन यू फाइंड आउट दैट यू एक्चुअली गॉटन प्लेड. एंड ताकि आपके साथ ऐसा ना हो, दुबई वांट्स यू टू गेट स्कैम स्मार्ट. लर्न टू स्पॉट स्कैम्स एंड यू कुड विन 75,000 dirhams. इट्स एंटायर कैंपेन कॉल्ड डोंट गेट प्लेड, दैट्स द नेम ऑफ द कैंपेन. एंड यू गॉट गेट स्कैम स्मार्ट. भाई स्कैम कौन सा है, क्या रियल है, यू गॉट बी वेरी वेरी गुड एट स्पॉटिंग दैट. एंड दैट्स द टेस्ट इज ऑल अबाउट. दुबईज इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सेंटर यानी कि DESC हैज लॉन्च्ड इट्स डोंट गेट प्लेड कैंपेन. एंड इसमें जो कोर मैसेज है वो ये है कि तीन स्टेजेस हैं. देखो कभी कोई भी मैसेज आया इन एनी वे फॉर्म, यू गॉट पॉज. द फर्स्ट स्टेप इज पॉज बिफोर रिस्पॉन्डिंग. सोचो समझो उसके बाद ही रिस्पॉन्ड करो. वेरीफाई करो कि किसने मैसेज भेजा है. यू नो दैट पर्सन, डोंट नो द मैसेज. इज द ईमेल आईडी लुकिंग जेन्युइन, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन फाइनली डोंट गेट प्लेड. इसके चलते कॉम्पिटिशन्स यहाँ पर लॉन्च हुए हैं इन दुबई. चार कॉम्पिटिशन्स हैं वर्थ 230,000 dirhams इन प्राइजेज. 75,000 dirhams का साइबर सिक्योरिटी कैंपेन है. 90,000 का स्पॉटलाइट अवार्ड. 35,000 AI साइबर क्रिएटिविटी चैलेंज एंड 35,000 का यूनिवर्सिटी AI साइबर सीरीज प्राइजेज एज वेल. सो व्हाट्स द साइबर सिक्योरिटी स्पॉटलाइट अवार्ड? 45,000 का फर्स्ट प्राइज इफ यू कैन टर्न अ स्कैम वीडियो इन टू अ वायरल वीडियो. इफ यू आर UAE बेस्ड कॉन्टेंट क्रिएटर एंड यू हैव अ मीडिया काउंसिल advertiser permit, then you can take part. एक original vertical video बनाना है एंड phishing से लेकर deep fakes, gaming scams, किसी भी topic पर आप एक vertical video बनाओ. And then if you can use AI creatively, then there's that AI competition. 15,000 dirhams का best video, 10,000 dirhams का AI comic or visual story. And then universities can also get involved, should get involved, build a cyber series, that's what it is. And teams of 2 to 5 students, so it's all happening here. That's how prevalent all these scams are. पूरा का पूरा कॉन्टेस्ट 230,000 dirhams के प्राइजेस. हमारा अपन टू से दिस सॉन्ग्स कमिंग अप इन जस्ट अ व्हाइल. दिस इज शाहरुख रेजिडेंसेस बाय डैन्यूब.

0: 101.2. The Beat of Bollywood. Let me tell you something about business. You never really know how far it can take you. Today it might be a license, tomorrow an office, then suddenly you need more visas, a warehouse, maybe even industrial land. So start somewhere that can grow with you. At Umal Quain Free Trade Zone, you get more than a business license. You get one complete ecosystem to start, operate and scale your business with visa and bank account assistance too. Visit uaqftz.com. The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
1: Subah utte hi अपने आलिशान घर से सी फेसिंग गेट, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंस के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है। शाहरुख्स बाय डैन्यूब, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स। लिव लाइफ किंग स्टाइल।
2: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
3: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
4: Morning, it's 10:16 on the clock, and NCM has forecast 3 days of rain this week across the UAE. And barish ki itne dino se hum log jo intezar kar rahe the, finally that is going to come true. That's what the NCM has said for this week. Right now, it is 34 degrees Celsius, humidity at 56%, winds blowing at 5 kilometers per hour, highs of 34, lows of 30 degrees Celsius.
0: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.ae.

और कुछ शामें ऐसी होती हैं जिसमें आपको लगता है कि आपके और जो सुपरस्टार्स आप स्टेज पे देख रहे हैं उसके बीच में और कोई ना है, ऐसी फीलिंग आपकी होने वाली है ऑन द 13th of November दुबई. आर यू रेडी फॉर एन इवनिंग वेयर टू ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी वॉइसेस कम टुगेदर ऑन वन स्टेज. पैंथियन प्रेजेंट्स बॉर्डरलेस मेलोडीज फीचरिंग द लेजेंडरी आबिदा परवीन एंड कैलाश खेर लाइव इन कॉन्सर्ट. टू लेजेंड्स वन स्टेज, एक अनफॉरगेटेबल म्यूजिक इवनिंग. मार्क योर कैलेंडर्स फॉर द 13th of November at DWTC Dubai World Trade Center. आपके और इस शाम के बीच में कोई नहीं आना चाहिए. Tickets available now on Platinum List. So don't wait. Book yours today. Brought to you by Hop Events, creating experiences that stay with you long after the music ends. Event made large by Big 106.2. Two legends, one stage. Abida Parveen, Kailash Kher, 13th November. Book your tickets now. Big 106.2.

0: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: The Big Breakfast now is Shahrukh's Residences by Danube. Brought to you by Zulekha Hospital. Your health matters. Listen to her every day.
2: Mugembo! खुश हुआ
3: आमिर, मैंने बोला आमिर खान, कहते नहीं आमिर जान। तो कितनों की जान है आप?
4: मॉम की जान।
3: ये देखो, ये जो इन्होंने एकदम संभाला है ना, घुमा के, बहुत बढ़िया। करते क्या है आप आमिर? वेरी नाइस, वेरी नाइस। फिलहाल हम खेलेंगे 5 सेकंड रूल, मजेदार गेम है। आपको मिलेंगे 5 सेकंड, मैं आपको दूंगी कुछ कैटेगरीज, 3 चीजें बतानी है 5 सेकंड के अंदर। ऑल द बेस्ट। 3 फ्रूट्स विद द लेटर ए।
4: एप्पल।
3: और अरे, नॉट वेरी गुड विद फ्रूट्स आल्सो। 3 चीजें जो पनीर से बनती हैं।
4: पालक पनीर।
3: और ओए होए, नहीं आपसे नहीं हो पाएगा आमिर खान, ये नहीं हो पाएगा आपसे।
1: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक, 5 PM to 9 PM, द बिग थ्रिल विद मानसी, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग ट्रैफिक ब्रॉट टू यू बाय selfdrive.ae।
5: सुबह मेरे शो के टाइम पे ट्रैफिक बढ़ता भी है, फिर बढ़ के फिर शांत भी रहता है। इट्स नाउ आफ्टर 10 o'clock, शांत वाला टाइम हो गया है। शांत गदाधारी ट्रैफिक, शांत 311 हेडिंग साउथ गोइंग टुवर्ड दुबई फ्रॉम शारजा। 3-4 मिनट की देर ही आपको मिलने वाली है बिग साई ऑफ रिलीफ। देन देयर इज S112 पे आपको हल्का बुल्का ट्रैफिक मिलने वाला है। एंड दिस इज इंडस्ट्रियल एरिया 6 इन शारजा। स्टिल अ बिट ऑफ नॉर्थ बाउंड ट्रैफिक right after Oasis Mall in Sharjah, heading in the direction of safe zone on E88. And और कहाँ पर ट्रैफिक है, कहाँ पर ट्रैफिक है? There's D71 पे थोड़ा बहुत ट्रैफिक, there's an incident being reported on D68 also heading towards D71. हल्का बुल्का ट्रैफिक आपको मिलेगा at 75, and this is going towards Dubai Frame Financial Center DIFC में, the road that heads out towards E11, you'll find 4 से 5 मिनट की देर।
6: Now lease a brand new SUV from Jetwort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। Big 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: Again? The car's not starting.
1: I think the battery's gone.
0: Then stop guessing. Get Solite batteries.
1: What's special?
0: Premium Korean tech. Zero maintenance. Perfect for this heat.
1: Wow, that's smooth. Where do I find it?
0: Auto Pro Fast Track Dialer Battery Auto Studio. Any major auto store. Solite batteries. Power you can trust. Distributed by AMAP Group.
2: We have insured Dubai families since 1995. The kids we covered then have kids we cover now. Get health insurance from insurancemarket.ae.
3: सुबह उठते ही अपने आलीशान घर से सी फेसिंग भी, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंट्स के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है. शाहरुख्स बाय डैन्यूब, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेज स्टार्टिंग एट 1.65 million dirhams. Live life, Kingstar. Hey,
4: jaldi hata, tera khatana. Chal hata. Ha. Arey jaldi hata, yaar chinda. Ha.
5: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
6: It is 10:42 on the clock and sunte hain aaj subah ka aakhri traffic update. There is very little ट्रैफिक ऑन द रोड्स आउट देयर. थैंकफुली S112 पे आपको ट्रैफिक मिलेगा इंडस्ट्रियल एरिया 6 में, ये दोनों डायरेक्शंस में ईस्ट एंड वेस्ट करता हुआ ट्रैफिक. देन देयर इज 311 एज यू क्रॉस साउथी जर्मन हॉस्पिटल इन अजमान हेडिंग साउथ. अचानक यहाँ पर थोड़ा ट्रैफिक गोइंग टुवर्ड्स सेफ जोन. देन देयर इज 311 E11 हेडिंग साउथ, 4-5 मिनट की देर. एज यू क्रॉस सिटी सेंटर मिर्दिफ एट 311 हेडिंग साउथ, अ बिट ऑफ कंजेशन वहाँ पर नजर आ रहा है. देन देयर इज ऑल्सो D75 पे ट्रैफिक गोइंग टुवर्ड्स दुबई फ्रेम, 3-4 मिनट की देर हेडिंग ईस्ट. एंड ऑल्सो DIFC रोड पे आज सुबह से काफी ट्रैफिक है, रोज के मुकाबले थोड़ा ज्यादा. एंड दिस इज इन बोथ डायरेक्शंस नॉर्थ एंड साउथ. बिजनेस वे मेट्रो स्टेशन पे रोज की तरह आपको मिलेगा कंजेशन. इन केस यू स्पॉट समथिंग एंड इफ इट्स सेफ टू कॉल, कॉल मी ऑन 800-1062.
7: Now lease a brand new SUV from Jetwort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
5: Big 106.2.

ज्यादा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।

0: The Big Breakfast now is Shahrukh's Residences by Danube. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: सुबह उठते ही अपने आलिशान घर से सी फेसिंग गेट, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंस के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है। शाहरुख्स बाय डैन्यूब, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स। लिव लाइफ किंग स्टाइल।
0: Two legends, one stage, one unforgettable evening. Pantheon presents Borderless Melodies with Abida Parveen and Kailash Kher live in concert 13th November at Dubai World Trade Center. Book your tickets now on Platinum List. Brought to life by Hop Events. Creating experiences that stay with you. Official radio partner, Big 106.2. Big 106.2. That's my song.

0: Big Unlimited. The biggest Bollywood hits non-stop. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: सुबह उठते ही अपने आलिशान घर से सी फेसिंग भी, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंट्स के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है। शाहरुख्स बाय डैन्यूब, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स। लिव लाइफ किंग स्टाइल।
0: The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 054-309-1062. Big 106.2. The beat of Bollywood. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.ae.

0: हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है? दुनिया में यूं ही होता है, ये जो गहरे सन्नाटे हैं वक्त ने सबको ही बांटे हैं। दिल आखिर तू क्यों रोता है?
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: सुबह उठते ही अपने आलिशान घर से सी फेसिंग बीच, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंस के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है। शाहरुख बाय डैनियल, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स। लिव लाइफ किंग स्टाइल।
0: द बिग मिक्स मिस किया गया?
2: कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते।
3: हाय रितुल।
4: हाय अवनी।
3: क्या कर रहे थे आप?
4: I was in middle of preparing a proposal and when I got the call, I just shut down my laptop and got out.
3: Oh, लेकिन एक और स्टॉप बन गया आपका, आपने लास्ट में मुझे, I mean, of course, मैंने जब आपको कॉल किया था, what did you expect?
4: I was a bit taken, you know, taken by surprise. Because I never have received a call from an FM despite me being here for 20 years, so I was taken a bit back by surprise. Yeah.
3: मुझे जानना है, ऐसे होता है ना कि कोई नंबर लकी होता है, what is your lucky number?
4: My lucky number would be 7.
3: 7, okay.
4: Yeah.
3: Okay, पर आज 8 तारीख है, लेकिन तब भी मैं आपको एक लकी न्यूज दे सकती हूँ, क्योंकि आई कॉल्ड यू फॉर बिग चेक इन टू जर्मनी, यू रिमेम्बर, एंड इवन आई एम सरप्राइज्ड, आई वांट व्हाट कार्ड्स डू यू हैव, बिकॉज यू आर कमिंग विद अस टू बिग चेक इन टू जर्मनी।
4: That's great, that's great.
3: All the best and see you on the trip now. See you on that flight.
4: See you, Avani. And everybody else.
0: Cheer your midday mood Monday to Friday, 1 to 5 p.m. The Big Mix with Avani. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big 106.2. That's my song.

0: Big Unlimited. The biggest Bollywood hits non-stop. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: सुबह उठते ही अपने आलिशान घर से सी फेसिंग गेट, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंस के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है। शाहरुख बाय डैन्यूब, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स। लिव लाइफ किंग स्टाइल।
0: Start your morning like a superstar. The Big Breakfast now is Shahrukh's Residences by Danube. Weekdays 7 a.m. to 11 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Zulekha Hospital and Papa John's. To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 054-309-1062. Big 106.2, the beat of Bollywood. Big 106.2, song of the hour, brought to you by insurancemarket.ae.

0: सुबह उठते ही अपने आलिशान घर से सी फेसिंग भी, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंस के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है। शाहरुख्स बाय डैनियल, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 million dirhams. लिव लाइफ King style.
1: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song, and your message to 0543091062. Big

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक,
2: 1:06।
1: Bollywood.

0: The beat of Bollywood.
1: Two splendid years of Insurance Market Metro Station. From Sheikh Zayed Road to your screen, I am always nearby. Insurance Market. .ae.
2: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetto T2, T1, and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq. Four exciting SUVs. With prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
3: सुबह उठते ही अपने आलीशान घर से सी फेसिंग ली, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंस के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है. शाहरुख्स बाय डैन्यूब, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स. लिव लाइफ किंग स्टाइल.
0: Big.

0: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
1: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: नवरात्रे शुरू हो गए थे कल से एंड आज जो है वेदर चेंज में कोई फर्क नहीं है। 35 डिग्री स्टिल, ह्यूमिडिटी विद 51%, फेस्टिव सीजन आ गया यार, लेकिन ये ह्यूमिडिटी कब खत्म होगी?
2: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25+ आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me।

0: Don't chase banks. Come to me. Credit cards, loans and mortgages at creditmarket.ae. Call 800 Alfred. Alfred simplifies money.
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड ऑफिशियली फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है, नवरात्र शुरू हो चुके हैं एंड यू नो ये वाली प्रॉब्लम्स ना हम लड़कियों को अपनी लाइफ में चाहिए होती है. प्रॉब्लम्स लाइक कि यार ये चनिया चोली कौन सी दिन पहनूं और अगर ये मैंने पहन ली है तो मैं इसके साथ ज्वेलरी कौन सी पहनूं, ये किस दिन जाएगी, आखिरी दिन के लिए मुझे कौन सी वाली रखनी है. एंड नए नए इंस्पो आ रहे हैं भाई, डेनिम स्लैश चनिया चोली भी आ रहे हैं. आपकी क्या इंस्पो है फॉर दिस नवरात्रि सीजन, शेयर करो मेरे साथ 0543091062 व्हाट्सएप नंबर पर. ऑफकोर्स यार तो गर्ली पॉप्स ऑलवेज एट रेस्क्यू यू नो.
3: वे चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया मेरे यार दी गड्डी दे नाल,
2: ऑफिशियली दैट टाइम ऑफ द सीजन जब हम रंग बिरंगे चटपटे कपड़ों में आ जाते हैं. कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: समझ ना रहे
1: no.
0: तो लेती क्यों?
1: मेरी बॉडी में सेंसेशंस होते हैं पर उनको कंट्रोल करते हैं।
0: कैसे है सेंसेशंस?
1: सेंसेशंस जैसे सरसराहट, सनसनाहट, गुदगुदाहट, डगमगाहट, फरफराहट, थरथराहट, टपकपाहट, भरभराहट, थरथराहट, टपकपाहट, भरभराहट, टपकपाहट, झटपटाहट, टपकपाहट, झुबुगाहट, झुबुलाहट, झुबुदाई, झुबिलाई।
2: Big 106.2, the beat of Bollywood. Have you got what it takes to say stop?
3: Are you kidding?
2: The Big Cash Call. Presenting sponsor Skechers. Title sponsor Papa John's. Powered by Big Ticket. Coming soon on Big 106.2.
4: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: Listen to her every day.
5: Mugembo! खुश हुआ
6: आमिर, मैंने बोला आमिर खान, कहते नहीं आमिर जान। तो कितनों की जान है आप?
7: मॉम की जान।
6: ये देखो, ये जो इन्होंने एकदम संभाला है ना, घुमा के, बहुत बढ़िया। करते क्या है आप आमिर? वेरी नाइस, वेरी नाइस। फिलहाल हम खेलेंगे 5 सेकंड रूल, मजेदार गेम है। आपको मिलेंगे 5 सेकंड, मैं आपको दूंगी कुछ कैटेगरीज, 3 चीजें बतानी है 5 सेकंड के अंदर। ऑल द बेस्ट। 3 फ्रूट्स विद द लेटर ए।
7: एप्पल।
6: और अरे अरे अरे अरे अरे, नॉट वेरी गुड विद फ्रूट्स आल्सो। 3 चीजें जो पनीर से बनती हैं।
7: पालक पनीर।
6: और ओए होए, नहीं आपसे नहीं हो पाएगा आमिर खान, ये नहीं हो पाएगा आपसे।
2: Keep your evenings electric. 5 PM to 9 PM. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
8: शेखजाद रोड E11 पर आपको दुबई टूवर्ड्स शारजा पर अल इत्तेहाद स्ट्रीट अलनादा पर ट्रैफिक मिल सकता है। उसके अलावा शेख मोहम्मद बिन जायद रोड E311 अलकसीज इंटरचेंज पर भी ट्रैफिक इज बिल्डिंग अप। ट्रेड सेंटर जंक्शन शेखजाद रोड कनेक्शन पर भी आपको कंजेशन मिल सकता है। उसके अलावा एयरपोर्ट रोड, ओमान स्ट्रीट एंड डमास्कस स्ट्रीट, देयर इज ट्रक रिस्ट्रिक्शन विंडो फ्रॉम 1 to 3 PM। कहीं और फंसे हो, लेट मी नो कॉल करके 800-1062 पर।
9: Now lease a brand new SUV from Jetwood and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
2: Big 106.2.
10: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरज़ू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए।
2: The Big Mix with Avni. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

0: ही बना रहे हो खोरफकान जाने के लिए, देयर इज एन अपडेट. फुजेरा टू खोरफकान वाली रोड जो है वहाँ की स्पीड लिमिट पर अपडेट है. इट इज रिड्यूस फ्रॉम 120 किलोमीटर पर आवर टू 100 किलोमीटर पर आवर स्टार्टिंग कल से. अक्टूबर 13th ट्यूजडे से शुरू होगा ये. एंड डिसीजन इज मेड ऑफ कोर्स विद द कोऑर्डिनेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एमिंग के भाई रोड सेफ्टी और बढ़े. तो अगर आप ये जाना चाहते हो उन वादियों में, दैट सीनिक ब्यूटी, आई एब्सोल्युटली लव इट. लेकिन उस सीनिक ब्यूटी के साथ ध्यान भी रखना है स्पीड लिमिट का, भूल मत जाना.
1: ओ गड्डियां ऊंचियां रखियां नरा वो जट दे पीछे या पर तू मैनू भाली ही
0: जाती. आई नेवर बीन टू खोरफकान बाय द वे. अगर आपके पास कोई टिप्स हैं खोरफकान के लिए तो बताओ मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर 0543091062.

0: Now lease a brand new SUV from Jetwort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. एंड भाई लास्ट वीकेंड ना बहुत लेजी रहा है मेरा. जितने मर्जी वीकेंड प्लान बना लो लेकिन जब आपको बेड पुकार रहा होता है ना कि सोती रहे फिर आपको कोई और प्लान नहीं दिखता. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद मी. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अगले वीकेंड का प्लान नहीं बनाऊंगी. और अगर आप

होगा दिल तेरा लेके ही तो लिख बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच है बोली में थोड़ा रियान भी टच है जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ बी ए डी शाह नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा थी तेरी ना

0: 93.2 The Beat of Bollywood.
1: सुबह उठते ही अपने आलिशान घर से सी फेसिंग भी, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंट्स के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है। शाहरुख्स बाय डैनियल, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स। लिव लाइफ किंग स्टाइल।
0: द बिग मिक्स ब्रॉट टू यू बाय insurancemarket.ae
2: insurancemarket.ae

0: क्या तुमने भी बताया ना कि दुनिया ऐसी भी है?
1: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ।
2: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. एंड यू नो, हम हैलोवीन का वेट नहीं करते हैं. हॉरर जॉनर ऑफ फिल्म्स हमें इतनी पसंद होती हैं कि हम कभी भी लगा के देख सकते हैं. कभी मतलब कभी भी, रात को 2 बजे बोलोगे मैं तब भी देख लूँगी. हाँ, उसके बाद नींद नहीं आएगी, उसके बाद मैं 2-3 कॉल्स खड़काऊंगी, थोड़ा लाइफ में अपनी वापस जाऊंगी, वाइब में वापस जाना पड़ता है, वरना सच में रात को नींद नहीं आती है. एंड फॉर दिस टाइम्स हैलोवीन वॉच, द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस रिमेन्स नेटफ्लिक्स मोस्ट ब्यूटिफुल सैडेस्ट हॉरर सीरीज. एंड ये मुझे मेरे एक दोस्त ने रिकमेंड करी थी. मैंने बहुत ही पुश करके, खुद को फोर्स करके देखी थी, बिकॉज इट्स अ सीरीज. बट हैंड्स डाउन यार, क्या कमाल की सीरीज. अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, डू गिव इट अ वॉच. उसके साथ साथ देयर हैव बीन बॉलीवुड हॉरर फिल्म्स एज वेल, जो आपको अकेले नहीं देखनी है. 2003 में आई थी डरना मना है, 2008 में आई थी फूंक, एंड आई स्टिल रिमेंबर फूंक और फूंक 2 मैंने एज अ किड देखी थी, और मैंने मम्मी से बहुत डांट भी खाई थी क्योंकि मैंने वो फिल्म देख लिया, मुझे नींद नहीं आ रही है रात को. तुम्बाड़ 2018 की फिल्म. देन देयर वाज 13B 2009 में रिलीज हुई थी. 13B हैज टू बी दैट बेंचमार्क ऑफ हॉरर फिल्म्स, जिसको देखने के बाद हम कजन्स के साथ देख रहे थे, लेकिन हम तब भी पूरी रात अकेले नहीं सो पाए, साथ में भी नहीं सो पाए. तुम बताओ मुझे कोई एक ऐसी फिल्म जिसका एक्सपीरियंस, हॉरर फिल्म जिसका एक्सपीरियंस आपको अभी तक याद है. व्हाट वाज दैट फिल्म, बताओ मुझे कॉल करके 800-1062. वी आर टेकिंग रिकमेंडेशंस फॉर हॉरर फिल्म्स राइट नाउ. 800-1062 इज द नंबर.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 2:05।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 105.2. The Beat of Bollywood. The Big Jill.
1: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
2: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetto T2, T1 and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq. Four exciting SUVs. With prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. T&C apply.
3: सुबह उठते ही अपने आलिशान घर से सी फेसिंग भी, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंस के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है। शाहरुख बाय डैन्यूब, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स। लिव लाइफ किंग स्टाइल.
0: Big.

0: You know me from insurancemarket.ae. Now let me simplify your money too. Credit cards, loans, mortgages. Creditmarket.ae. Call 800 Alfred.
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड मेरे साथ है फिल्मी मोनिका. हम बात कर रहे थे हैलोवीन मूवीज के बारे में. हाय मोनिका.
3: हाय.
2: आपकी रील्स देख देख कर हमें बहुत अच्छा लगता है बिकॉज आपकी रील्स देख कर मैं मूवी देखने जाती हूँ एंड आई फील ऑलमोस्ट सेम सेम और लगता है कि वक्त है मैं ये फिल्म देखने जा सकती हूँ. थैंक यू सो मच फॉर द वर्क यू आर डूइंग.
3: Thank you. Means a lot. You made my day.
2: अच्छा बताओ भाई हमें कुछ recommendations for Bollywood films जो horror genre की हैं जिसको देखकर एकदम दिल दहक जाए.
3: देखो मेरे सारे followers को पता है कि मुझे भूत प्रेतों की बातें करने में मजा बहुत आता है. तो जहाँ भूत दिखते हैं वहां मैं पहुंच जाती हूँ. तो Bollywood की जो horror films है ना वो देखने का अलग ही मजा है क्योंकि उसमें गाने भी आ रहे हैं, चटपटा रोमांस भी चल रहा है, तो मजेदार तो होती है. तो बॉलीवुड में जो मेरी फेवरेट हॉरर फिल्म्स हैं दैट इज 1920. ओ माय गॉड द क्लाइमैक्स. क्लाइमैक्स में जो हनुमान चालीसा है भाई साहब, गूसबम्प्स. देन 13 भी इट्स द ओनली हॉरर फिल्म फ्रॉम इंडिया जिसने एक्चुअली में मुझे डराया था. इट्स अ साइकोलॉजिकल हॉरर और इसमें भूत नहीं है. एंड में बताते हैं क्या हो रहा था बट अ वेरी गुड फिल्म एंड अ मस्ट वॉच. एंड देन देयर इज दिस फिल्म कॉल्ड रात. बहुत पुरानी फिल्म है लेकिन क्या कहें रात.
2: ओके.
3: जो फिल्म की कहानी है और जैसे शूट हुई है ना भाई मजा ही आ जाएगा देखने में. एक तो आज के टाइम में थोड़ी स्लो लग सकती है लेकिन क्या कैमरा वर्क था इस फिल्म का. एंड देन भूत उर्मिला की इफ यू हैव वॉच्ड तो ये मेरे को बहुत उसमें भूत से ज्यादा उर्मिला देख के डर लगता है.
2: मैंने भूत और रात नहीं देखी है बट अगेन एक जो मैं ऐड करना चाहूंगी दैट इज हॉन्टेड 3D और हमने इस पे बहुत बात करी है. नो
3: ओ माय गॉड आई लव दिस फिल्म द म्यूजिक एंड द स्टोरी एंड सिंस यू हैव टॉक्ड अबाउट इट तो मैं इसके लिए तुम्हें एक ट्रिविया देती हूँ. हॉन्टेड वॉज एक्चुअली इंस्पायर्ड फ्रॉम अ हॉलीवुड फिल्म कॉल्ड एंटिटी. तो एंटिटी जो फिल्म थी ये अर्ली 80s या लेट 70s में आई होगी. तो इससे इंस्पायर्ड इंडिया में ऑलरेडी फिल्म्स बनी हैं. वन इज हवा उसमें तबू है एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट पे और वो भी बहुत अच्छी हॉरर फिल्म है. देन देयर इज दायरा उसमें डैनी जी हैं तो वो बहुत अच्छी नहीं है लेकिन सेम कॉन्सेप्ट पे है. उसके बाद हॉन्टेड 3D आई जो एंटिटी जितनी ही अच्छी लगी थी मुझे. एंड देन द ओजी राज. राज का क्लाइमेक्स बहुत भयंकर है भाई. वो चीख तुम एक बार सुन लो फिर तुम्हें अपने घर में डर लगने लग जाएगा.
2: राज तो मुझे मेरे पेरेंट्स ने देखने ही नहीं दी थी.
3: आपके प्यार में आई नो अवनी आई नो आई अंडरस्टैंड.
2: थैंक यू सो मच. एंड ये इतनी सारी बातें करने के बाद ना ये मूवीज के सॉन्ग्स जो है मेरे कानों में गूंज रहे हैं. आई थिंक सो एक आध तो मैं अभी चलाती हूँ. डरने का माहौल बन रहा है. वैसे भी मंडे चल रहा है व्हाई नॉट
3: मंडे ब्लूज.
2: थैंक यू सो मच मोनिका.
3: ओके बाय
2: बाय. If you have such horror movie recommendations, aapko karna kya hai, call karo mujhe 800-1062. But that was Filmy Monica with us. One of the most entertaining film critiques we have right now. Thank you so much. And apne recommendations ke liye call karo mujhe 800-1062 par.

0: Now lease a brand new SUV from Jetworth and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड हम सब यार चटपटे गानों के फैन हैं, लेकिन उनमें जुनून है तो इनमें सुकून है।

लाइव 13 नवंबर को। टिकट्स अवेलेबल है प्लैटिनम लिस्ट पर, जाके अभी खरीद लो, इससे पहले सोल्ड आउट हो जाए। होने वाला है ये दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, एंड दिस इवेंट मेड लार्ज विद बिग 106.2। टू लेजेंड्स वन स्टेज, आविदा परवीन, कैलाश खेर, 13 नवंबर। अपनी टिकट्स अभी बुक करो। अंटिल देन कीप इट लॉक टू बिग 106.2।

सोलफुल प्यार कैसा होता है नहीं पता, लेकिन जब भी पता लगेगा ये इस गाने जैसा होता है. एंड इफ यू आर रेडी दुबई, मार्क योर कैलेंडर्स फॉर 13th नवंबर फॉर दिस बॉर्डरलेस मेलोडीज, जहां पर आविदा परवीन एंड कैलाश खेर साथ में आ रहे हैं. टू लेजेंड्स ऑन वन स्टेज, पैंथियन प्रेजेंट्स बॉर्डरलेस मेलोडीज फीचरिंग द लेजेंडरी आविदा परवीन एंड कैलाश खेर.

0: क्या तुमने कभी बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है?
1: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ।
2: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. एंड सनी देओल की लास्ट फिल्म आई थी बटवारा 1947, विच वॉज बेस्ड ऑन द अक्लेम 1989 हिंदी प्ले जिस लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया ही नहीं, रिटन बाय असगर वजाहत. उसके बाद उनकी नई फिल्म की अनाउंसमेंट हो चुकी है. द नेक्स्ट रिलीज इज गोना बी, जिसका नाम है सूर्य, रिलीजिंग इन थिएटर्स 20th November. एंड दैट वॉज ऑल्सो वेरी इंटेंस फिल्म यार. एंड दिस वन एज वेल, ये भी कहा जा रहा है भाई इंटेंस फिल्म होगी. And that's exactly what Sunny Deol does. All Sunny Deol fans, line up 20th November in cinemas. Film ka naam hai Surya. Till then, keep it locked to Big 106.2.

0: Morning Check. ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है. देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे. बिग टाइम चेक
1: 3:08.
0: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: Two legends, one stage, one unforgettable evening. Pantheon presents Borderless Melodies with Abida Parveen and Kailash Kher live in concert. 13th November at Dubai World Trade Center. Book your tickets now on Platinum List. Brought to life by Hop Events. Creating experiences that stay with you. Official radio partner, Big 106.2.
1: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetto T2, T1 and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq. Four exciting SUVs. With prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. T&C apply.
2: सुबह उठते ही अपने आलीशान घर से सी फेसिंग भी, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंस के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है. शाहरुख्स बाय डैन्यूब, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेज स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स. लिव लाइफ किंग स्टाइल.
0: Big 106.2.

0: फेस्टिव सीजन के आते ही ना हवा में इश्क हो जाता है।
1: द बिग मिक्स विद अवनि ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनि आपके साथ एंड दिवाली सेलिब्रेशन आर गेटिंग बिगर दिस टाइम। द बिग दिवाली मेला इज बैक। ज्वाइन करो टीम बिग 106.2 को सैटरडे विच इज 31st October एट ओएसिस मॉल दुबई, एक शाम जहाँ पर होगा बहुत सारा फन, गेम्स, फैबुलस फैशन शो, स्पिन द व्हील एंड ऑफकोर्स लोड्स ऑफ फेस्टिव एंटरटेनमेंट। ब्रिंग योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, सेलिब्रेट करो दिवाली हमारे साथ। बिग दिवाली मेला प्रेजेंटेड बाय पापा जॉन्स, पावर्ड बाय सोलाइट बैटरी विद ओएसिस मॉल दुबई as a venue partner, the big Diwali Mela, जहां पर celebrations होंगी और भी बड़ी, only on Big 106.2, part of Fun Asia's global media network। Diwali की गूंज सुनाई देने लगी है। आपके बच्चे 5 से 15 साल के बीच में हैं तो आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हो किस कॉन्टेस्ट में, बताती हूँ इन अ बिट। अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू Big 106.2।

0: Hollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: Listen to her every day.
3: Mogembo! खुश हुआ
4: आमिर, मैंने बोला आमिर खान, कहते नहीं आमिर जान। तो कितनों की जान है आप?
5: मॉम की जान।
4: ये देखो, ये जो इन्होंने एकदम संभाला है ना, घुमा के बहुत बढ़िया। करते क्या है आप आमिर? वेरी नाइस, वेरी नाइस। फिलहाल हम खेलेंगे 5 सेकंड रूल, मजेदार गेम है। आपको मिलेंगे 5 सेकंड, मैं आपको दूंगी कुछ कैटेगरीज, 3 चीजें बतानी है 5 सेकंड के अंदर। ऑल द बेस्ट। 3 फ्रूट्स विद द लेटर ए।
5: एप्पल।
4: और अरे अरे अरे अरे अरे, नॉट वेरी गुड विद फ्रूट्स आल्सो। 3 चीजें जो पनीर से बनती हैं।
5: पालक पनीर।
4: और ओए होए, नहीं आपसे नहीं हो पाएगा आमिर खान, ये नहीं हो पाएगा आपसे।
0: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक, 5 PM टू 9 PM, द बिग थ्रिल विद मानसी, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।
6: यार तुमने कोई बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है।
7: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ।
0: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
8: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
9: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: Big weather update brought to you by Alras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
10: The best part about festive season is कि हम इतने ज़्यादा busy हो जाते हैं कि हम ये weather change को एकदम ignore ही कर देते हैं। Right now humidity is at 68% with 34 degrees temperature.
0: Alras auto AC spare parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big

0: Now lease a brand new SUV from Jetwood and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2.
2: Participate in the Big Diwali Mela contest for a chance to be part of the kids' fashion show and win exciting prizes. The Big Diwali Mela, presenting sponsor Papa John's, powered by Solite Battery. Venue partner Oasis Mall Dubai. Only on Big 106.2.
3: The Big Mix with Avni on Big 106.2.
4: The beat of Bollywood.
5: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है एंड दिवाली सेलिब्रेशंस आर दिस टाइम गोना बी बिगर विद द बिग दिवाली मेला बिकॉज इट्स सो बिग. अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में वो है जो लगता है हमारे मिस्टर फटाका एंड मिस्टर फुलझड़ी बनने में, एज क्राइटेरिया है 5 से 15 साल का होना चाहिए आपका बच्चा, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज करके. You think your child have what it takes to be a Mr. Pataka or Miss Fulzhadi? आपको करना क्या है, बस मैसेज भेजना है इस WhatsApp नंबर पर 0543091062. टाइप करो बिग दिवाली स्पेस आपका नाम और इस WhatsApp नंबर पर भेज दो. मैं करूंगी आपको कॉल, खेलूंगी आपके साथ एक कॉन्टेस्ट एंड लेट्स सी आपका बच्चा पार्टिसिपेट कर पाता है या नहीं आपके भरोसे. व्हाट्सएप नंबर क्या है 0543091062. द बिग दिवाली मेला प्रेजेंटेड बाय पापा जॉन्स, पावर्ड बाय सोलाइट बैटरी एट ओएसिस मॉल दुबई, आवर वेन्यू पार्टनर. कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2 बिकॉज दिस टाइम दिवाली इज गोना बी बिगर.

0: बॉलीवुड।
1: सुबह उठते ही अपने आलिशान घर से सी फेसिंग बीच, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम, और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंट्स के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है। शाहरुख्स बाय डैनियल, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स। लिव लाइफ किंग स्टाइल।
2: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetto T2, T1 and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq, four exciting SUVs. With prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan, visit selfdrive.ae. TNC apply.
3: Two legends, one stage, one unforgettable evening. Pantheon presents Borderless Melodies with Abida Parveen and Kailash Kher live in concert 13th November at Dubai World Trade Center. Book your tickets now on Platinum List. Brought to life by Hop Events, creating experiences that stay with you. Official radio partner, Big 1

0: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए।
1: द बिग मिक्स विद अवनी, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Participate in the Big Diwali Mela contest for a chance to be part of the kids fashion show and win exciting prizes. The Big Diwali Mela, presenting sponsor Papa John's, powered by Solite Battery. Venue partner Oasis Mall Dubai. Only on Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड आपके बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस फैशन शो में बिग दिवाली मेला में. पर उसके लिए आपको एक बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन का जवाब देना होगा. कहाँ पर? 0543091062 इस व्हाट्सएप नंबर पर. और आज पहला दिन है यार, पहली बार सवाल पूछने वाली हूँ तो बहुत ही बेसिक से शुरू करती हूँ. हिंट ये है कि जब से मैंने बोलना शुरू किया है मैं बहुत बार सही जवाब जो वर्ड है बहुत बार बोल चुकी हूँ. क्वेश्चन है, विच फेस्टिवल इज वाइडली नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. इजी पीजी जवाब देना है आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर 0543091062 एंड आपका बच्चा भी पार्टिसिपेट कर सकता है इन दिस फैशन शो और बन सकता है मिस्टर फटाका या फिर मिस फुलझड़ी. व्हाट्सएप नंबर है 0543091062.

मिलना है तो थोड़ी दूरी छोड़ दूँ क्या, कुछ इश्क जता दिया है शाही से, थोड़ा सा इश्क ज़रूरी छोड़ दूँ क्या।

0: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. दिवाली मेला इज बैक एंड उसके लिए फैशन शो हो रहा है जहाँ पे आपके बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जीत सकते हैं ये टाइटल मिस्टर पटाखा मिस फुलझड़ी एंड विल विन प्राइजेस वर्थ 500 दिरहम्स एंड एवरी पार्टिसिपेटिंग चाइल्ड विल वॉक अवे विद अ हैम्पर. और पार्टिसिपेट करने के लिए आपको रजिस्टर करना है बस इस व्हाट्सएप नंबर पर 0543091062. मैंने बहुत ही ईजी पीजी सा क्वेश्चन पूछा है, विच फेस्टिवल इज नोन एज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. बहुत ही लाइट से शुरू किया ये सवाल. किड कैन एक्चुअली पार्टिसिपेट इन दिस कॉन्टेस्ट अगर आप अपना नाम रजिस्टर करते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर 0543091062. दिस टाइम दिवाली इज गोना बी बिगर एंड बेटर फॉर योर किड्स.

106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. दिस इज द बिग मिक्स लास्ट आवर ऑफ माई शो. एंड बहुत ही बड़ी खबर पता लगी है यार. वी आर सो मच इन्वेस्टेड इन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज. आई मीन ये खबर नहीं है, ये तो फैक्ट है. लेकिन वन थिंग जो बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स नहीं करते थे, इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं बनाते थे. रणबीर कपूर का आज तक कोई ऑफिशियल इंस्टा अकाउंट नहीं है. एंड देयर वाज वन मोर एक्टर लाइक दैट, दैट वाज सैफ अली खान. बट ऑफिशियली ही इज बैक ऑन इंस्टाग्राम. द फर्स्ट फॉलो सोचो किसको किया होगा. बहुत दिमाग लगाओ, बहुत वाइल्ड गेस करो. इट्स करीना कपूर खान. मोर कमिंग अप योर वे फ्रॉम द बॉलीवुड इंडस्ट्री. कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 4:07।
1: Bollywood.

0: mine too. The beat of Bollywood.
1: सुबह उठते ही अपने आलिशान घर से सी फेसिंग भी, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंस के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है। शाहरुख्स बाय डैन्यूब, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स। लिव लाइफ किंग स्टाइल।
0: द बिग मिक्स ब्रॉट टू यू बाय insurancemarket.ae।
2: insurancemarket.ae।
3: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetto T2, T1 and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq, four exciting SUVs. With prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan, visit selfdrive.ae. TNC apply.
4: Nothing feels wrong, and that's exactly why you should get checked. This October, give yourself a little peace of mind. Pink It Now is back for its 15th year at Zulekha Hospital. Women over 40 can register for a specialist consultation and mammogram for just 299 dirhams. Because looking after yourself isn't selfish. Call 600-52-442 or WhatsApp us. Pink It Now. Don't wait to feel something. Zulekha Hospital, your health matters.

0: 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: इट्स 34 डिग्रीज आउट देयर बट इट फील्स लाइक 50 डिग्रीज बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी। 70% मतलब ये ह्यूमिडिटी देख के तो भैया पानी शर्मा जाए।
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2। बिग

0: पकौड़े बनाने तो नहीं आते मुझे, और मैं ना चाय भी बहुत गंदी बनाती हूँ। कौन सी बड़ी बात है, बाकी सब कुछ आता है मुझे। आपके ब्लैक हेड भी हटा सकती हूँ मैं। हो गया सर, आप कंटिन्यू करो।
1: द बिग मिक्स विद अवनि ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनि आपके साथ. दिस इज द बिग मिक्स. एंड यार हमारे अंदर ना सवाल बहुत होते हैं लेकिन कभी कभी हम नहीं पूछते. हम वेट करते रह जाते कि यार अपने आप जवाब ना चल के आ जाएगा. ठीक है होता है लेकिन वो कभी कभी होता है. स्पेशली जब क्वेश्चंस हो आपके फाइनेंसिस के रिलेटेड, डोंट बी शाय एंड आस्क प्रॉपरली टू द प्रॉपर रिसोर्सेज. 800 अल्फ्रेड पे कॉल कर सकते हो आप. यू ऑलरेडी नो अल्फ्रेड फ्रॉम insurancemarket.ae एंड नाउ अल्फ्रेड कैन एक्चुअली हेल्प यू कंपेयर क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन्स एंड मॉर्गेजेस टू. आपको बस विजिट करना है creditmarket.ae पर या फिर ऑफ कोर्स कॉल कर सकते हो 800 अल्फ्रेड पर. डोंट हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चंस. कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: Now lease a brand new SUV from Jetworth and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2.
2: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
3: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड मेरे ना दिमाग में एक गाना चल रहा था, लेकिन ये गाना सुन के आपको क्या याद आता है? My mind reminds me of

0: दीवानी, क्योंकि उसमें ये गाना गाते हैं, गाया जाता है, इस पे डांस होता है ट्रिप पे, ओ दैट वेडिंग पर. लेकिन दिस सॉन्ग उलाला फ्रॉम द मूवी द डर्टी पिक्चर जो रिलीज हुई थी 2011 में, उसका सीक्वल आने वाला है. एकता कपूर हैज कन्फर्म्ड के द डर्टी पिक्चर 2 रिलीज होगी. कब होगी ये नहीं पता फिलहाल.
1: फिर मुझको रुला.
0: बेसिकली सिनेमाज में एक और हिट मूवी होने वाली है, दैट्स गोना बी द डर्टी पिक्चर 2, बिकॉज सीक्वल इज गोना बी मोर इम्पैक्टफुल देन 2011 द डर्टी पिक्चर, ऐसा सोचा जा रहा है. एक्सपेक्टेशंस हैं, बार जितनी हाई है, लेकिन विद्या बालन जैसा कैरेक्टर, द एक्टिंग, द परफॉर्मेंस, ओ गॉड, दैट वाज एक्चुअली टॉप नॉच. कीप इट लॉक टू बिग 106.2.

0: और रेजिडेंट्स के लिए प्राइवेट यॉट्स, जहां सफर ही मंजिल बन जाता है।
1: शाहरुख्स बाय डैन्यूब, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स। लिव लाइफ किंग स्टाइल।
2: The Big Jill.
3: All my favorite music in one spot.
2: Weekdays 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. Have you got what it takes to say stop?
4: Are you kidding?
2: The Big Cash Call. Presenting sponsor Skechers. Title sponsor Papa John's. Powered by Big Ticket. Coming soon on Big 106.2. Missed your morning buzz?
5: उठा ले रे देवा, उठा ले रे पापा।
2: ये सुनो।
6: शेठ भाई, गुड मॉर्निंग। एकदम मस्त है, आप कैसे हैं?
7: तबीयत आवाज से तो आप बिल्कुल ही सही लग रहे हो, लेकिन जवाब जो आपने मुझे पहले दिया था उससे कुछ क्रॉस कनेक्शन हो गया एंड भाभी जी को आपको करेक्ट करना पड़ा। ये अक्सर होता है, कितनी बार भाभी जी आपको करेक्ट करती हैं लाइफ के अंदर?
6: अभी तो बेटर हाफ है मेरी, वो मुझसे बेटर है।
7: कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंसी हो रही है भाई, बता रहा हूँ थोड़ा बच के।
6: हाँ बिल्कुल, आज से थोड़ा सा मैं भी अपनी सेल्फ ट्रेनिंग पे ध्यान रखूंगा।
7: थोड़ा ध्यान रखो भाई, थोड़ा ध्यान रखो नजरें। हाँ, बट यू शुड नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड व्हाइल ड्राइविंग। लेकिन चक्कर ये कि मैंने
6: मतलब तो उन्हीं का होता है, पिक्चर तो उन्हीं को देखनी होती है।
7: मतलब आप कहना चाह रहे हो कि आप आंखें बंद करके पिक्चर हॉल में बैठने वाले हो?
6: हमें तो बस उन्हें जाकर के कहते हैं ना, वो एक स्नैक्स का अरेंजमेंट करना है, गाड़ी में बैठा के इनको लेके जाना है, देखो वापस लेके आना है।
7: देखो ये हाय बेचारा का जो नाटक है ना, ये मैं कई सालों से करते आ रहा हूँ इस दुनिया का। मतलब आई बिन देयर डन दैट ब्रो, तो मेरे को पट्टी मत बनाओ, ठीक है ना। मजा तो राजेश भाई को ही आने वाला है सिनेमा हॉल के अंदर, लेकिन हाय बेचारा, ओ माय गॉड, हमारा तो काम धर्म पत्नी को मिसेज को खुश करना है भाई। हमारा काम सिर्फ आपको ले जाना पहुंचाना है और घर वापस लेके आना है सही सलामत है, फिर पॉपकॉर्न समोसा ये सब आपकी खिदमत में हाजिर है हम लोग हैं।
6: अभी सुन नहीं रही है तो अपने भजन निकाल रहा हूँ।
7: नहीं वो पता नहीं है, सुन रही है, आवाज उन तक पहुंच रही है। आप टेंशन मत लो, आज का जवाब आपको मिलेगा मिलेगा। शाम को बताना मुझे कल सुबह कि आज शाम आपकी कैसी गुजरी है ना।
2: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 7 AM टू 11 AM द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। Traffic brought to you by selfdrive.ae.
8: Monday evening rush has started, particularly around Business Bay, Al Safan Media City stretch. Traffic aapko busy milega on Al Khil Road near Business Bay, along Sheikh Mohammed bin Zayed Road. Kahin aur phase ho, let me know, call karke 800-1062 par.
9: Now lease a brand new SUV from Jetwood and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
2: Big 106.2.

0: शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है, फिर अपन 1001% हिस्ट्री
1: बनाएंगे। सुबह उठते ही अपने आलिशान घर से सी फेसिंग, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम, और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस, और रात फैमिली के साथ।

0: cards, loans, mortgages. Why make money complicated? Ask me, creditmarket.ae. Call 800-ALFRED.
1: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए.
2: The Big Mix with Avni. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

0: Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ, जिसका फिलहाल हो रहा जाने का टाइम. कल मिलती हूँ फिर से आपको 1 to 5 द बिग मिक्स पर. ड्राइव वाले गाने आपके साथ छोड़ के जा रही हूँ, तो एक और इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ छोड़ के जाती हूँ, दैट नाउ यू कैन एक्चुअली लीज अ ब्रांड न्यू एसयूवी फ्रॉम जेटोर एंड स्कोडा विद प्राइसेस स्टार्टिंग फ्रॉम ओनली 1,999 दिरहम्स पर मंथ फॉर अ 12 मंथ प्लान. विजिट selfdrive.ae/tncfly. ड्राइव की आदत लग गई है ना, जा रही हूँ, कल मिलती हूँ फिर से. तब तक के लिए यू कैन गिव अस अ फॉलो ऑन बिग 106.2 इंस्टा हैंडल, और मुझे भी फॉलो कर सकते हो आप अवनी आर के पेज पर AVNI Y AAA R.

0: सुबह उठते ही अपने आलिशान घर से सी फेसिंग गेट, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंस के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है। शाहरुख बाय डैनियल, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स। लिव लाइफ किंग स्टाइल।
1: Let me tell you something about business. You never really know how far it can take you. Today it might be a license, tomorrow an office, then suddenly you need more visas, a warehouse, maybe even industrial land. So start somewhere that can grow with you. At Umal Quain Free Trade Zone, you get more than a business license. You get one complete ecosystem to start, operate and scale your business with visa and bank account assistance too. Visit UAQFTZ.com.
2: Big 106.2. That's my song.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है. देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे.
1: बिग टाइम चेक. गुड इवनिंग. 5:08.
2: Bollywood.

0: मेरा सेंस अभी वो बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। The Big Chill.
2: All my favorite music in one spot.
1: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
3: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetto T2, T1 and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq, four exciting SUVs. With prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan, visit selfdrive.ae. TNC apply.
4: मेरठ की एक पिक्चर परफेक्ट फैमिली, एक परफेक्ट बहू और एक ऐसा राज जो सब कुछ बदल दे।
5: तुम्हें डायन ही चाहिए थी ना, लो आ गई।
4: Amazon MGM Studios and Color Yellow Production present नई नवेली, starring यामी गौतम, आदिनाथ कोठारे, सुनीता राजवर and others. Releasing 16th October in cinemas. Distributed by Al Nisr Cinema Film. To win invites, keep listening to Big 106.2.
6: सुबह उठते ही अपने आलिशान घर से सी फेसिंग व्यू, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंस के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है। शाहरुख बाय डैनियल, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स। लिव लाइफ किंग स्टाइल।
7: Get ready to celebrate Diwali like never before. The Big Diwali Mela is back. On Saturday, 31st October, join Team Big at Oasis Center Dubai for a spectacular evening filled with fun, games, a fabulous fashion show, spin the wheel and loads of festive entertainment. Bring your family, bring your friends and come make unforgettable Diwali memories with Big 106.2. The Big Diwali Mela, where the celebrations are always big. Presenting sponsor, Papa John's, powered by Solite Battery. Venue partner, Oasis Mall, Dubai. Only on Big 106.2, a part of Fun Asia's global media network.
8: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
9: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: Big weather update brought to you by Al Ras, the number one auto AC spare parks dealer in the Middle East.
10: है तो 34 degrees but feels like 43 because of the humidity. 68% पर फिलहाल humidity, लो जाएगा around 30.
1: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2.

नादोजी बच्चन फैंस, I'm sure already know this song, इसलिए कॉल आने शुरू हो चुके हैं. अगर आपने गाना पहचान लिया है, then give me a call 800-1062 पर. We are karaoke-ing. फिलहाल नवरात्रि की वाइब्स है. आई एम श्योर सारा दिन कैसा भी जाए, शाम को गरबा डांडिया का प्लान है तो माहौल बनाते हैं. Right here with this one on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Big. Big 106.2. The beat of Bollywood. Let me tell you something about business. You never really know how far it can take you. Today it might be a license, tomorrow an office, then suddenly you need more visas, a warehouse, maybe even industrial land. So start somewhere that can grow with you. At Umalkwain Free Trade Zone, you get more than a business license. You get one complete ecosystem to start, operate and scale your business with visa and bank account assistance too. Visit uaqftz.com. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
1: Again? The car's not starting.
2: I think the battery's gone.
1: Then stop guessing. Get Solite batteries.
2: What's special?
1: Premium Korean tech. Zero maintenance. Perfect for this heat.
2: Wow, that's smooth. Where do I find it?
1: Auto Pro Fast Track Dialer Battery, Auto Studio, any major auto store. Solite batteries. Power you can trust. Distributed by AMAP Group.
3: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
4: सुबह उठते ही अपने आलिशान घर से सी फेसिंग बीच, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंस के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है. शाहरुख्स बाय डैन्यूब, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स. लिव लाइफ किंग स्टाइल.
0: Got what it takes to say stop.
5: Are you kidding?
0: The Big Cash Call. Presenting sponsor Skechers. Title sponsor Papa John's. Powered by Big Ticket. Coming soon on Big 106.2. Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
6: A 15-minute slowdown in Sheikh Zayed. ये तो बस शुरुआत है. मंडे की शाम आगे आगे देखो होता है क्या. It is packed bumper to bumper. Festival City in Adil Hamar, Sheikh Mohammed bin Zayed, Silicon Oasis, Immersive, Mohisna. एक घंटा 4 मिनट का डिले. Heavy traffic right now. अगर आप Russell Core Industrial Area के आसपास हैं, kind of stand still right now. If you're headed towards Al Kooz, taking first Al Khail Street, Al Safa ke pass, again, a 15 to 20 minute delay. There's also traffic, Discovery se going towards Furjan and slow moving right now. If Barsha 1 ke aas paas hain aap, a 15 se 18 minute ka delay. Iske alawa kahin atke ho, mujhe batao, 800-1062 par.
7: Now lease a brand new SUV from Jetwort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
0: Big 106.2.
8: तुम बीमार हो?
9: No.
8: तो लेती क्यों?
9: मेरी बॉडी में सेंसेशंस होते हैं, पिल्स उनको कंट्रोल करते हैं.
8: कैसे हैं सेंसेशंस?
9: सेंसेशंस जैसे सरसराहट, सनसनाहट, दूध को दाग दाग मगा, धरफराहट, धरथराहट, टपको पहाड़, धरवराहट, धरथराहट, टपको पहाड़, धरवराहट, धरथराहट, टपटाहट, धरफराहट, सुबह गुलाब, गुलाब, गुलाब, गुलाब, गुलाब, गुलाब,
0: गुलाब, गुलाब, गुलाब, गुलाब, गुलाब, गुलाब, गुलाब, गुलाब, गुलाब, गुलाब, गुलाब, गुलाब, गुलाब, गुलाब, गुलाब, गुलाब, गुलाब, गुलाब, गुलाब, गुलाब, गुलाब, गुलाब, गुलाब, गुलाब, गुलाब, गुलाब, गुलाब, गुलाब, गुलाब, गुलाब, गुलाब, गुलाब, गुलाब, गुलाब, गुलाब, गुलाब, गुलाब, गुलाब, गुलाब, गुलाब, गुलाब, गुलाब, गुलाब, गुलाब, गुलाब, गुलाब, गुलाब, गुलाब, गुलाब, गुलाब, गुलाब, गुलाब, गुलाब, गुलाब, गुलाब, गुलाब, गुलाब, गुलाब, गुलाब, गुलाब, गुलाब, गुलाब, गुलाब, ग

0: Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Happy Navratri. Yeah, Big Thrill. मैं हूँ मानसी. Festive season, festive vibes. But Monday की शाम vibe बड़ी same होती है. मन नहीं लगता और traffic बहुत ज़्यादा होता है जब आप traffic jam में अटकते हैं. We jam here with the karaoke. गाना आए या ना आए, अगर गाने का शौक है.
0: Karaoke.
1: Then this is it. I am so distracted right now. किसी ने popcorn बनाया ऑफिस में, इतनी खुशबू आ रही है. और हसन, गुड इवनिंग.
2: गुड इवनिंग.
1: आपके ऑफिस में होता है सडनली कोई कुछ गर्म करता है और आपका वो खाने का दिल करने लगता है, किसी ने पॉपकॉर्न बनाया ऑफिस में, खुशबू आ रही है मुझे.
2: स्मेल वगैरह से जो है केबिन कभी कभी होती है.
1: इतनी खुशबू आ रही ना पॉपकॉर्न की मुझे. फिलहाल कैसा रहा आपका मंडे?
2: ये मत पूछा करो आप. मंडे ऑलवेज मंडे ही होता है.
1: मंडे को ना मन लगाना मुश्किल होता है. बट यस्टरडे वॉज बच्चन साहब्स बर्थडे. यू आर अ बच्चन फैन?
2: नॉट big one, but
1: not
2: he was
1: big
2: a legend.
1: One. Wasn't he? Still is a legend and forever will be a legend.
2: Yeah, for sure. I mean, but I'm not that big fan. मतलब मुझसे भी बड़े बड़े हैं लोग ऐसे ऐसे जिन्होंने उनकी कोई फिल्म escape ही नहीं करी.
1: अरे उनके बर्थडे पर कल देखना चाहिए था आपको, जो भीड़ लगी थी उनके घर के बाहर.
2: Very good.
1: So I think the fandom that Mr. Bachchan has, it is unmatched. Filhal, we celebrating his belated birthday here. I played you a Bachchan song only again, a very very popular one. I'm sure आपने guess कर लिया है. हसन की आवाज में सुनेंगे आज शाम.
0: Karaoke.
2: पपी घुंगरू के पग घुंगरू बांध मीरा नाची थी. के पग घुंगरू बांध मीरा नाची थी और हम नाचे बिन घुंगरू के पग घुंगरू बांध मीरा नाची थी.
1: माहौल बना दिया है. बड़ी अच्छी लाइन है गाने की कि वो तीर भला किस काम का जो निशाने से छूटे.
2: जी जी जी जी.
1: आपके तीर निशाने पे लगते हैं सर?
2: लग जाते हैं. मोस्टली लग जाते हैं.
1: बस हसन, मजा आ गया. मतलब मंडे इवनिंग माहौल बना दिया है आपने.
2: थैंक यू वेरी मच.
1: वन सॉन्ग एंड यू सैंग इट ब्यूटीफुली. थैंक यू.
2: थैंक्स अ लॉट मानसी. थैंक यू.
1: बाय बाय. यही है कारियोकी. अगर आप भी गाड़ी में ये गाना गाना चाहते हैं, गिव मी अ कॉल 800-1062 पर.
0: कारियोकी Big 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: आज से एग्जैक्टली एक महीना एक दिन बाद यू हैव अ चांस टू विटनेस मैजिक लाइक नेवर बिफोर. इमेजिन एक ही स्टेज पर आप सुनेंगे द क्वीन ऑफ सूफी म्यूजिक आबिदा जी को. एंड विद हर द मैजिक ऑफ कैलाश खेर ऑन स्टेज.
2: तेरी सखी मंगल गौरी धरती अंबर सजौरी.
1: एक शाम जब दो लेजेंडरी आवाजें एक साथ एक ही स्टेज पर आएंगी. पैंथियन प्रेजेंट्स बॉर्डरलेस मेलोडीज फीचरिंग द क्वीन ऑफ सूफी म्यूजिक आबिदा परवीन एंड द पावर हाउस कैलाश खेर लाइव इन कॉन्सर्ट. मार्क योर कैलेंडर्स फॉर 13th ऑफ नवंबर एट द दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर. टिकट्स आर नाउ अवेलेबल प्लैटिनम लिस्ट पर, सो डोंट वेट. आज ही बुक कीजिए अपनी टिकट्स. ब्रॉट टू यू बाय हॉप इवेंट्स, creating experiences that stay with you long after the music ends. And this event is made large by us, Big 106.2.

0: 102. The Beat of Bollywood.
1: What I'm about to tell you, don't tell anyone.
2: Why are you whispering?
1: Because if everyone finds out about Papa John's new pan pizza, good luck getting one.
2: For pizza? Have you seen it? Cheese all around, edge-to-edge toppings, crispy garlic parmesan crust.
3: My mouth just watered.
4: Try the new pan pizza today. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
5: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetto T2, T1, and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq. Four exciting SUVs. With prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
6: Two legends, one stage, one unforgettable evening. Pantheon presents Borderless Melodies with Abida Parveen and Kailash Kher live in concert. 13th November at Dubai World Trade Center. Book your tickets now on Platinum List. Brought to life by Hop Events. Creating experiences that stay with you. Official radio partner, Big 106.2.
7: Subah utte, apne aalishan ghar se sea facing me. Phir infinity pool. या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी. एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ. और रेजिडेंट्स के लिए प्राइवेट यॉट्स, जहां सफर ही मंजिल बन जाता है. शाहरुख्स बाय डैन्यूब, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स. लिव लाइफ किंग स्टाइल.
6: Start your morning like a superstar. The Big Breakfast now is Shahrukh's Residences by Danube. Weekdays 7 a.m. to 11 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Zuleika Hospital and Papa John's.
8: Hey, jaldi hata, tera khata na. Chal hata. Arey jaldi hata.
6: Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
9: हैवी ट्रैफिक इस वक्त अगर आप D94 पे है अल्थानिया स्ट्रीट, इफ यू आर हेडिंग टुवर्ड्स जुमेरा स्ट्रीट एज वेल, 15 टू 18 मिनट डिले. काफी स्लो मूविंग ट्रैफिक है शेखजाद पर फिलहाल, 55 मिनट डिले. हैवी ट्रैफिक शेख मोहम्मद बिन जायद मर्ग टू मोहेसना, इट्स द टिपिकल मंडे ट्रैफिक. एक घंटा 4 मिनट का स्लो डाउन है अलमनारा अगेन. इट इज बम्पर टू बम्पर, नॉट मूविंग एट ऑल राइट नाउ. ट्रैफिक मिलेगा डिस्कवरी से फुरजान जाते हुए. देयर इज ऑल्सो ट्रैफिक ऑन द हेस स्ट्रीट. प्लस अगर आप इस वक्त फर्स्ट अलखेल लेकर अलकूस की तरफ है, वहां भी 18 से 20 मिनट का डिले.
5: Now lease a brand new SUV from Jetwort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
6: Big 106.2.
10: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
11: नहीं, ये तो मुफ्त है.
10: Good. क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास. चलो फोन लगाओ.
6: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the Beat of Bollywood.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 6:07।
2: Bollywood.

0: Credit cards, loans, mortgages. Why make money complicated? Ask me, creditmarket.ae. Call 800-ALFRED.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Good evening. Happy Navratri. Yeah, Big Thrill of Mansi. And festive season is here. Navratri, Karwa Chauth, Diwali, Shadi season. Ab cocktail ho, sangeet ho, ya mehndi, Diwali ho, ya phir Navratri. You will find the perfect outfit for your festivities at Bavri and Kora. Lehenga se lekar sari tak, kurta se lekar sherwani tak, sab aapko yahan milega. Filhal main aapko de rahi hu mauka wahan jaake shopping karne ka. A 500 dirham voucher courtesy of Bavri and Kora jeetne ka mauka. Sham.
1: Participate in Bavri and Beju Bavra. Guess the look contest and get a chance to win 500 dirhams Kora and Bavri voucher. Only on Big 106.2.
2: Very, very simple. I am going to give you a few hints. Aapne guess karna hai the outfit that I am talking about. Yes, main aapko ek outfit ke clues dungi aur aapko guess karna hoga ki ye outfit hai kaun sa. But 500 दिरहम का वाउचर है जीतने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी व्हाट्सएप करना पड़ेगा रजिस्टर करना पड़ेगा एंड देन आई विल रन द रैंडमाइजर टू पार्टिसिपेट बावरी एंड कोरा अपना नाम लिख के भेजना है मुझे 0543091062 पर अगर आप हुए लकी आई एम गोना गिव यू अ कॉल एंड देन यू हैव टू फिगर आउट द आउटफिट एंड लेके जाओगे आप 500 दिरहम का वाउचर टू शॉप एट बावरी एंड कोरा विच आई थिंक इज द परफेक्ट प्लेस टू सॉर्ट All your desi wardrobe needs so get set to WhatsApping. Bavri and Kora apna naam likhe bhejna hai 0543091062 par.
1: Participate in Bavri and Beju Bavra. Guess the look contest and get a chance to win 500 dirhams Kora and Bavri voucher. Only on Big 106.2.

0: Credit cards.ae. Don't chase banks. Come to me. Credit cards, loans and mortgages at creditmarket.ae. Call 800 Alfred. Alfred simplifies money.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae. Let me tell you something about business. You never really know how far it can take you. Today it might be a license, tomorrow an office, then suddenly you need more visas, a warehouse, maybe even industrial land. So start somewhere that can grow with you. At Umal Quain Free Trade Zone, you get more than a business license. You get one complete ecosystem to start, operate and scale your business with visa and bank account assistance too. Visit UAQFTZ.com. Have you got what it takes to say stop?
2: Are you kidding?
1: The Big Cash Call. Presenting sponsor Skechers. Title sponsor Papa John's. Powered by Big Ticket. Coming soon on Big 106.2. Missed your morning buzz?
3: उठा ले रे देवा।
1: ये सुनो
4: शेठ भाई, गुड मॉर्निंग। एकदम मस्त है, आप कैसे हैं?
5: तबीयत आवाज से तो आप बिल्कुल ही सही लग रहे हो, लेकिन जवाब जो आपने मुझे पहले दिया था उससे कुछ क्रॉस कनेक्शन हो गया एंड भाभी जी को आपको करेक्ट करना पड़ा। ये अक्सर होता है, कितनी बार भाभी जी आपको करेक्ट करती हैं लाइफ के अंदर?
4: अभी तो बेटर हाफ है मेरी, वो मुझसे बेटर है।
5: कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंसी हो रही है भाई, बता रहा हूँ मैं, थोड़ा बच के।
4: हाँ बिल्कुल, आज से थोड़ा सा मैं भी अपनी सेल्फ ट्रेनिंग पे ध्यान रखूंगा।
5: थोड़ा ध्यान रखो नजरें। हाँ, बट यू शुड नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड व्हाइल ड्राइविंग। लेकिन चक्कर ये कि मैंने
4: हाँ मतलब तो उन्हीं का होता है, पिक्चर तो उन्हीं को देखनी होती है।
5: मतलब आप कहना चाह रहे हो कि आप आंखें बंद करके पिक्चर हॉल में बैठने वाले हो?
4: हमें तो बस उन्हें जाकर के कहते हैं ना, वो एक स्नैक्स का अरेंजमेंट करना है, गाड़ी में बैठा के इनको लेके जाना है, देखो वापस लेके आना है।
5: देखो ये हाय बेचारा का जो नाटक है ना, ये मैं कई सालों से करते आ रहा हूँ इस दुनिया का। मतलब आई बिन देयर डन दैट ब्रो, तब मेरे को पट्टी मत बनाओ, ठीक है ना। मजा तो राजेश भाई को ही आने वाला है सिनेमा हॉल के अंदर, लेकिन हाय बेचारा, ओ माय गॉड, हमारा तो काम धर्म पत्नी को मिसेज को खुश करना है भाई, हमारा काम सिर्फ आपको ले जाना पहुंचाना है और घर वापस लेके आना है सही सलामत है, फिर पॉपकॉर्न समोसा ये सब आपकी खिदमत में हाजिर है हम लोग हैं।
4: अभी सुन नहीं रही है तो अपने बंगाल निकाल रहा हूँ।
5: नहीं वो पता नहीं है, सुन रही है, आवाज उन तक पहुंच रही है, आप टेंशन मत लो, आज का जवाब आपको मिलेगा। शाम को बताना मुझे कल सुबह कि आज शाम आपकी कैसी गुजरी है ना।
1: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 7 AM to 11 AM द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
6: लगता है बर्फ पड़ने वाली है,
7: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: Big weather update brought to you by Alras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
8: 34 degrees है, feels like 42 because of the humidity जो फिलहाल 63% पर है, आज लो जाएगा around 30.
1: Alras auto AC spare parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: छुमका?
1: मैं गुंडा, कातिल, जेल से भागा हुआ मुजरिम। शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं।
2: बिग 106.2

0: फेस्टिव सीजन इज हियर, डांडिया खेलने जाना है, शॉपिंग करने जाना है, ऑफ कोर्स मिठाइयां लेने जाना है, जो भी करना है, गाड़ी होना बहुत जरूरी है, राइट? एंड इफ यू लुकिंग फॉर द परफेक्ट ऑप्शंस, देन
1: द बिग थ्रिल विद मानसी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: Then self-drive it is. You can now lease a brand new SUV from Jator and Skoda with prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Perfect option for all those who are planning to get one for the festive season. Aaj hi visit kijiye selfdrive.ae. Terms and conditions do apply.
1: Big 106.2 Fast Track Song of the Hour. Brought to you by selfdrive.ae.
2: पूरे देश को पगला दूंगा, अभी तो कुछ पेश किया है, सुनो. नाम या दाम?
3: नाम.
4: Money follows my brother.
3: चब

0: हो या कोई भी त्योहार, बावरी और कोरा से दिखो शानदार हर बार। From graceful kurtas and majestic sherwanis to intricately crafted saris, lehengas and salwar suits, redefine ethnic style whether it's for him or her. Get festive, get fabulous at Bavri and Kora at Meena Bazaar, your favorite wedding shopping destination.
1: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetto T2, T1 and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq, four exciting SUVs. With prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan, visit selfdrive.ae. TNC apply.
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
3: सुबह उठते ही अपने आलीशान घर से सी फेसिंग भी, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंस के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है। शाहरुख बाय डैन्यूब, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स। लिव लाइफ किंग स्टाइल।
4: बिग ट्रैफिक ब्रॉट टू यू बाय selfdrive.ae।
5: स्टिल एक घंटा चार मिनट का डिले आपको मिलेगा शेखजाद पे। इट इज पैक, देयर इज हेवी ट्रैफिक इफ यू आर ऑन द हेस स्ट्रीट गोइंग टुवर्ड्स स्पोर्ट्स सिटी, बहुत स्लो मूविंग है। जुमेरा स्ट्रीट पे भी देयर इज अ 12 से 18 मिनट का डिले, स्पेशली अगर आप D94 पे हैं। ट्रैफिक अ बिट पैची नियर फेस्टिवल सिटी, प्लस हेवी ट्रैफिक राइट नाउ डेरा से इफ यू गोइंग फर्दर टुवर्ड्स शारजा। फहीदी पैक्ड है, बम्पर टू बम्पर नॉट मूविंग एट ऑल ट्रैफिक सिचुएशन है। और ऐसी सिचुएशन इस वक्त आपको मिलने वाली है अगर आप जा रहे हैं टुवर्ड्स उमल शेफ, बहुत ही स्लो मूविंग ट्रैफिक है। एनीथिंग एल्स यू'ड लाइक टू रिपोर्ट मुझे बताएं 800-1062 पर।
6: Now lease a brand new SUV from Jetort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
4: Big 106.2.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Happy Navratri. Good evening. Yeah, Big Thrill with Mansi. The festive season is here. And if you want that perfect outfit for your festivities, just head to Bavri and Kora. They've got a stunning collection. Filhal, yahan bhi every single evening, I'll give you a chance to win a 500 dirham voucher courtesy of Bavri and Kora. Filhal, aa chuke hain Nikhil. Good evening.
2: Good evening, ji.
1: Kaise hain, sir, aap?
2: Badiya, badiya. Happy Navratri.
1: To you too. Aap gaye dandiya vandiya khelne ki abhi tak nahi gaye?
2: नहीं नहीं अभी तक तो नहीं गया.
1: तो जाते हो नहीं जाते?
2: हाँ हाँ बिल्कुल, एवरी ईयर वी ट्राई टू गो.
1: तब तो शॉपिंग सीजन भी आ गया है क्योंकि इसके बाद करवा चौथ है, फिर दिवाली है.
2: बिल्कुल बिल्कुल, अरे खर्चे अभी चालू होंगे अभी.
1: बहुत बढ़िया. तो आप हर साल नए दिलाते हो करवा चौथ दिवाली पे कि बस?
2: अरे नहीं नहीं करवाने पड़ेंगे ना, नहीं तो घर से बाहर निकल जाएंगे.
1: चलो इस बार मैं आपका थोड़ा पैसा बचाने का मौका देती हूँ. आई वांट टू जस्ट गिव यू अ फ्यू हिंट्स. आपने गेस करना है द आउटफिट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. बीवी को शॉपिंग करवाते हो तो साथ बैठते हो या फिर बाहर घूमते रहते हो?
2: अब ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है.
1: देखो अगर बाहर घूमते हो ना तो नुकसान हो जाएगा, साथ बैठते हो तो फायदा होगा इसमें.
2: बीच बीच में रहता हूँ.
1: बीच बीच में रहता हूँ. चलो आज देखते हैं कितना आप बीच में रहते हैं, कितना आपका ध्यान शॉपिंग पे रहता है.
0: Participate in Bavri and Beju Bavra. Guess the look contest and get a chance to win 500 dirhams Kora and Bavri voucher. Only on Big 106.2.
1: निखिल आपके हिंट्स हैं, मैं एंगेजमेंट से लेकर संगीत संध्या तक सेलिब्रेशंस में खूब नजर आती हूँ. मेरे मल्टीपल पीसेस होते हैं. देयर इज अ टॉप, देयर इज अ बॉटम एंड अ स्टनिंग दुपट्टा. मेहंदी हो या फिर सन डाउनर, मुझे फेस्टिव लुक के लिए स्टाइल किया जाता है. मैं फ्लोई हूँ, मैं ग्लैमरस हूँ एंड यूजुअली मैं चोली के साथ पहनी जाती हूँ. व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट?
2: लहंगा.
1: मुझे लगा कि साड़ी या सलवार बोलोगे बट लहंगा बोल ही दिया पहली बार में.
2: थैंक यू. क्या बात है.
1: वाह यार मैं बड़ी इम्प्रेस्ड हूँ. मतलब आप रहते हो साथ में, शॉपिंग करवाते हो?
2: मेरी एक्चुअली मेरी सिस्टर्स भी है, कजन और फिर वाइफ है, तो यू नो लेडीज और बहनों के साथ तो जाते हैं.
1: काम आई ये बहनों और बीवियों के साथ, बीवियों के साथ सॉरी, बीवी के साथ शॉपिंग. आपका हुआ courtesy of Bavri and Kora and I'm telling you, वहाँ पे आपके लिए भी बहुत stunning kurtas and sherwani है. So go and have a lot of fun. They've got a stunning collection. कौन ज़्यादा खुश होने वाला है, बीवी के आप खुद अपने लिए शॉपिंग करोगे इस बार?
2: इस बार दोनों के लिए शॉपिंग होनी है क्योंकि मेरी वाइफ से ब्रदर की शादी है दिसंबर में.
1: वाह साले साहब की शादी है तो जीजा जी को तो अच्छी शेरवानी लेनी चाहिए बाबरी कोरा से. मजा आएगा. जाइए, द कलेक्शन इज रियली रियली नाइस एंड हैप्पी हैप्पी शॉपिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग.
2: थैंक यू वेरी मच.
1: बाय.
0: ये तेजा तेजा क्या है? ये तेजा तेजा क्या है? ये तेजा तेजा

0: हॉलीवुड।
1: सुबह उठते ही अपने आलिशान घर से सी फेसिंग भी, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंस के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है। शाहरुख्स बाय डैनियल, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 million dirhams. लिव लाइफ किंग स्टाइल।
2: Nothing feels wrong, and that's exactly why you should get checked. This October, give yourself a little peace of mind. Pink It Now is back for its 15th year at Zulekha Hospital. Women over 40 can register for a specialist consultation and mammogram for just 299 dirhams. Because looking after yourself isn't selfish. Call 600-52-442 or WhatsApp us. Pink It Now. Don't wait to feel something. Zulekha Hospital. Your health matters.
3: Creditmarket.ae. You know me from insurancemarket.ae. Now let me simplify your money too. Credit cards, loans, mortgages. Creditmarket.ae. Call 800 Alfred. Alfred simplifies money.
4: Big 106.2. That's my song.

0: she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun.
1: Come on, come on.
0: Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
2: Good evening, यह Big Thrill Mansi. I'm sure office से आने के बाद तैयार होके अब देसियों का Tomorrowland वाला सीजन आ गया है. गरबा डांडिया खेलने जाना है. The festive season is here. The माहौल, the हवा is all very very positive, very very happy. दिवाली भी आने वाली है. एंड इसी के साथ आने वाला है द बिग दिवाली मेला. वी आर बैक विद आवर बिग दिवाली मेला ऑन द 31st of October. बहुत सारी मस्ती, बहुत सारे प्राइजेस, एंड ऑफ कोर्स बच्चों के लिए वंस अगेन वी आर बैक विद दैट वेरी वेरी स्पेशल फैशन शो. एवरी पार्टिसिपेटिंग किड इज वॉकिंग अवे विद अ हैम्पर. प्लस जो जीतेगा मिस्टर पटाखा और मिस फुलझड़ी का खिताब, वो तो कमाल बवाल प्राइजेस लेके जाने वाले हैं. बट रजिस्टर करना बहुत जरूरी है. इफ यू हैव किड्स बिटवीन 5 एंड 15 एंड यू वांट देम टू बी अ पार्ट ऑफ द बिग दिवाली मेला फैशन, देन वेरी वेरी सिंपल, आपने रजिस्टर करना है बिग दिवाली मेला. अपना नाम लिख के भेजना है 0543091062 पर.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग द टाइम राइट नाउ 7:09।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: मेरा सेंस अभी वो बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: What I'm about to tell you, don't tell anyone.
3: Why are you whispering?
2: Because if everyone finds out about Papa John's new pan pizza, good luck getting one.
3: For pizza? Have you seen it? Cheese all around, edge to edge toppings, crispy garlic parmesan crust.
2: My mouth just watered.
4: Try the new pan pizza today. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
5: Again? The car's not starting.
6: I think the battery's gone.
5: Then stop guessing. Get Solite batteries.
6: What's special?
5: Premium Korean tech. Zero maintenance. Perfect for this heat.
6: Wow, that's smooth. Where do I find it?
5: Auto Pro Fast Track Dialer Battery, Auto Studio, any major auto store. Solite batteries. Power you can trust. Distributed by AMAP Group.
7: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetto T2, T1 and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq. Four exciting SUVs. With prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
8: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
9: सुबह उठते ही अपने आलीशान घर से सी फेसिंग भी, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंस के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है। शाहरुख्स बाय डैन्यूब, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स। लिव लाइफ किंग स्टाइल।
10: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
11: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
0: 33 डिग्रीज है फिलहाल, काफी ह्यूमिड माहौल है बाहर, 67% पर ह्यूमिडिटी, लो जाएगा अराउंड 30।
1: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2।

0: You know me from insurancemarket.ae. Now let me simplify your money too. Credit cards, loans, mortgages. Creditmarket.ae. Call 800-ALFRED.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: लाइफ में ना बहुत कम ऐसे मौके आते हैं व्हेन यू गेट टू विटनेस मैजिक एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग ऑन द 13th ऑफ नवंबर. आज से एग्जैक्टली एक महीना एक दिन बाद एक ऐसी शाम जिसमें दो लेजेंडरी वॉइसेस आर कमिंग टुगेदर ऑन वन स्टेज. पैंथियन आपके लिए लेकर आए हैं बॉर्डरलेस मेलोडीज फीचरिंग द लेजेंडरी आबिदा परवीन जी एंड साथ में कैलाश खेर लाइव इन कॉन्सर्ट. दो लेजेंड्स एक स्टेज, एक अनफॉरगेटेबल इवनिंग. आई would call it magic on stage. Mark your calendars for the 13th of November. This is happening at the Dubai World Trade Center. Tickets are now available. Platinum list space. Don't wait. Book yours before they are sold out. Brought to you by Hop Events, creating experiences that stay with you long after the music ends. This event is made large by us, Big 106.2, the Beat of Bollywood.

0: Hollywood. Let me tell you something about business. You never really know how far it can take you. Today it might be a license, tomorrow an office, then suddenly you need more visas, a warehouse, maybe even industrial land. So start somewhere that can grow with you. At Umalkwain Free Trade Zone, you get more than a business license. You get one complete ecosystem to start, operate and scale your business with visa and bank account assistance too. Visit UAQFTZ.com.
1: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetro T2, T1 and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq. Four exciting SUVs with prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
2: मेरठ की एक पिक्चर परफेक्ट फैमिली, एक परफेक्ट बहू और एक ऐसा राज जो सब कुछ बदल दे।
3: तुम्हें डायन ही चाहिए थी ना? लो आ गई।
2: Amazon MGM Studios and Color Yellow Production present नई नवेली, starring यामी गौतम, आदिनाथ कोठारे, सुनीता राजवर and others. Releasing 16th October in cinemas. Distributed by Al Nisr Cinema Film. To win invites, keep listening to Big 106.2.
4: सुबह उठते ही अपने आलिशान घर से सी फेसिंग भी, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंस के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है। शाहरुख बाय डैनियल फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स। लिव लाइफ किंग स्टाइल।
0: Start your morning like a superstar. The Big Breakfast now is Shahrukh's Residences by Danube. Weekdays 7 a.m. to 11 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Zulekha Hospital and Papa John's. The Big Mix Miss Kiya Gaya.
5: कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते हो।
6: हाय मोनिका।
7: हाय।
6: आपकी रील्स देख देख कर हमें बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज आपकी रील्स देख कर मैं मूवी देखने जाती हूँ एंड आई फील ऑलमोस्ट सेम सेम। अच्छा बताओ भाई, हमें कुछ रिकमेंडेशंस फॉर बॉलीवुड फिल्म्स जो हॉरर जॉनरा की हैं, जिसको देखकर एकदम दिल दहक जाए।
7: देखो, मेरे सारे फॉलोअर्स को पता है कि मुझे भूत प्रेतों की बातें करने में मजा बहुत आता है, तो जहाँ भूत दिखते हैं वहां मैं पहुंच जाती हूँ। तो बॉलीवुड की जो हॉरर फिल्म है ना, वो देखने का अलग ही मजा है, क्योंकि उसमें गाने भी आ रहे हैं, चटपटा रोमांस भी चल रहा है, तो मजेदार तो होती है। तो बॉलीवुड में जो मेरी फेवरेट हॉरर फिल्म्स हैं, दैट इज 1920। ओ माय गॉड, द क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स में जो हनुमान चालीसा है भाई साहब, गूज़बम्प्स। देन 13 भी, इट्स द ओनली हॉरर फिल्म फ्रॉम इंडिया जिसने एक्चुअली में मुझे डराया था। इट्स अ साइकोलॉजिकल हॉरर और इसमें भूत नहीं है। एंड में बताते हैं क्या हो रहा था, बट अ वेरी गुड फिल्म। एंड देन भूत उर्मिला की, If you have watched, तो ये मेरे को बहुत उसमें भूत से ज़्यादा उर्मिला देख के लगा।
0: Cheer your midday mood Monday to Friday 1 to 5 p.m. The Big Mix with Avni, only on Big 106.2, the beat of Bollywood. Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
6: Patchy traffic at the moment. अगर आप शेख मोहम्मद बिन जायद पे हैं, मरिफ टू मोहिसना, इट्स गोना टेक यू अ 40 टू 50 मिनट डिले। स्लो मूविंग है, पैची ट्रैफिक है इस वक्त। अगर आप अलसफा स्ट्रीट के पास हैं, दिस स्टिल ट्रैफिक इन शेख जायद नॉट रियली बैड, 37 मिनट डिले फॉर नाउ। जुमेरा रोड दो इज पैक्ड इफ यू हेडिंग टूवर्ड्स जुमेरा 3। 10 से 12 मिनट का डिले आपको इस वक्त मिलेगा हेस स्ट्रीट पर, स्पेशली अगर आप जा रहे हैं टूवर्ड्स मोटर सिटी। कहीं और अटके हो मुझे बताओ 800-1062 पर।
1: Now lease a brand new SUV from Jetort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
0: Big 106.2.
5: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
8: नहीं, ये तो मुफ्त है।
5: Good. क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। चलो फोन लगाओ।
0: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
9: उबालोगे, दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

0: सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको।
1: गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी।
2: Big 106.2

0: मेरा सेंस अभी वो बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड The Big Chill.
2: All my favorite music in one spot.
1: Weekdays 9 PM to 12 AM on Big 106.2. Brought to you by InsuranceMarket.ae.
3: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetto T2, T1, and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq, four exciting SUVs. With prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan, visit selfdrive.ae. TNC apply.
4: शादी हो या कोई भी त्योहार, बावरी और कोरा से दिखो शानदार हर बार। From graceful kurtas and majestic sherwanis to intricately crafted saris, lehengas and salwar suits, redefine ethnic style whether it's for him or her. Get festive, get fabulous at Bavri and Kora at Meena Bazaar, your favorite wedding shopping destination.
5: सुबह उठते ही अपने आलीशान घर से sea facing view, फिर infinity pool या gym और सीधा spa. And recovery. एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंस के लिए प्राइवेट यॉट्स, जहां सफर ही मंजिल बन जाता है. शाहरुख बाय डैनियल, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स. लिव लाइफ किंग स्टाइल.
1: बिग 106.2.

0: मेरे बॉयफ्रेंड से वुलू वुलू करेगी तो धपकेंगी ना उसको।
1: ये है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। Let me tell you something about business. You never really know how far it can take you. Today it might be a license, tomorrow an office, then suddenly you need more visas, a warehouse, maybe even industrial land. So start somewhere that can grow with you. At Umalkwain Free Trade Zone, you get more than a business license. You get one complete ecosystem to start, operate and scale your business with visa and bank account assistance too. Visit UAQFTZ.com.
2: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetto T2, T1 and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq. Four exciting SUVs with prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
3: Creditmarket.ae. You know me from insurancemarket.ae. Now let me simplify your money too. Credit cards, loans, mortgages. Creditmarket.ae. Call 800 Alfred. Alfred simplifies money.
4: Subah uthte hi apne aalishaan ghar se sea facing view. Phir infinity pool ya gym aur seedha spa and recovery. Ek game paddle ya tennis. शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ और रेजिडेंस के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है। शाहरुख्स बाय डैन्यूब फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स। लिव लाइफ किंग स्टाइल।
5: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
6: नहीं, ये तो मुफ्त है।
5: गुड, क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। चलो फोन लगाओ।
1: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
1: इसी के साथ टाइम फॉर मी नाउ टू से गुड बाय, गुड नाइट, आई विल सी यू टुमारो. आई थिंक आज तो मंडे भी अच्छा लग रहा है. इट्स ऑल द फेस्टिव माहौल. In fact, this is going to be the first time I'm not home for Navratri in a very, very long time. पिछले 3-4 सालों से मैं हर साल अराउंड दिस टाइम नवरात्रि, दशहरा टाइम, दिवाली टाइम घर जाती हूँ. तो या इस बार की जो है आई एम हियर, बट स्टिल आई एम नॉट मिसिंग आउट ऑन एनी थिंग बिकॉज माहौल यहाँ भी कम नहीं है. मतलब one thing that I love about this country is even when we are away from our country, the vibe is similar. We celebrate all festivals, we celebrate all cultures, and that's the beauty of this country. Filhal jaate jaate bata do, we are very, very excited for the big Diwali Mela that's happening on the 31st of October. We are back again to celebrate Diwali with you. And if you have kids between 5 se 15 saal ki umar, we've got the fashion show again. So if you want to register your little ones, every single participating kid jo register karega is walking away with a hamper for sure. And Mr. Pataka, Miss Fuljadi to kamal prizes leke jayenge. Agar aapke bhi bachche bhi 5 se 15 saal ke beech mein hain and you want them to be a part of this fashion show, then register Big Diwali Mela. अपना नाम लिख के भेजना है 2054309 1062. फिलहाल डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन सोशल्स. 106.2 बिग एफएम इट इज. यू कैन से हाई टू मी, आई एम मानसी टॉकिंग. आई विल सी यू टुमारो. लीविंग यू विद

सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड द बिग चिल वेयर एवरी सॉन्ग फील्स लाइक अ डीप ब्रेथ आफ्टर अ लॉन्ग डे ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: 2, The Beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
0: Listen to her every day.
2: Mugembo! खुश हुआ
3: आमिर, मैंने बोला आमिर खान, कहते नहीं आमिर जान। तो कितनों की जान है आप?
4: मॉम की जान।
3: ये देखो, ये जो इन्होंने एकदम संभाला है ना, घुमा के, बहुत बढ़िया। करते क्या है आप आमिर? वेरी नाइस, वेरी नाइस। फिलहाल हम खेलेंगे 5 सेकंड रूल, मजेदार गेम है। आपको मिलेंगे 5 सेकंड, मैं आपको दूंगी कुछ कैटेगरीज, 3 चीजें बतानी है 5 सेकंड के अंदर। ऑल द बेस्ट। 3 फ्रूट्स विद द लेटर ए।
4: एप्पल।
3: और अरे, नॉट वेरी गुड विद फ्रूट्स आल्सो। 3 चीजें जो पनीर से बनती हैं।
4: पालक पनीर।
3: और ओए होए, नहीं आपसे नहीं हो पाएगा आमिर खान, ये नहीं हो पाएगा आपसे।
0: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक, 5 PM टू 9 PM, द बिग थ्रिल विद मानसी, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड। सम नाइट्स नीड नो वर्ड्स, जस्ट द राइट वाइब। सिंक इनटू द बिग चिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लौटेगा?
1: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पांच?
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: से पानी मत होश किए जा मुझे तो कोई खींचे तेरी ओ
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड लव लोफाई एंड नाइट फील्स Your soundtracks to unwind. Only on The Big Chill. On Big 106.2, The Beat of Bollywood.

0: Some nights need no words, just the right vibe. Sink into the big chill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: जितना भी ट्राई करोगी लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही।
3: बिल्कुल नहीं छूटेगा, क्योंकि होमवर्क भी मेरा, रिसर्च भी मेरी, बट प्लान होगा आपका। फ्रॉम कैफेज टू स्ट्रीट फूड, बजट फाइंड्स टू वायरल स्पॉट्स, ट्यून इनटू द बिग रेकमेंड्स एवरी संडे। क्योंकि अगर अवनी ने बेस्ट कह दिया तो बस कह दिया।
0: कैच द बिग रेकमेंड्स एवरी संडे फ्रॉम 3 to 6 PM विद अवनी, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड। The Big Chill, where every song feels like a deep breath after a long day. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: ਜਿੱਦਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਚੋਂ ਰੇਤਾ ਕਿਰ ਜਾਂਦਾ।